बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

90.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना,

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

ए तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तुहा सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेशुतो तुहा सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहा सारे इए ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 MHz पर ए है तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहा सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? जल्दी आ, क्या हुआ?
1: अरे सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
3: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलूं?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन पंकज पंडित के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों की हेडलाइंस पे। धर्मशाला में बारिश बनी महिला क्रिकेट मैच में बाधा, भारत ऑस्ट्रेलिया की महिला मैच मोहाली शिफ्ट। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बायोमेट्रिक और बारकोड स्कैनिंग के बाद ही ग्राउंड में प्रवेश। 734 पदों के लिए 98,719 युवाओं ने किया आवेदन। सतलुज और चिनाब नदी से रेत बजरी निकालने पर परियोजना कंपनियों को रोक। सरकार ने नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाई एरिया में इंसेंटिव जरूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने होम स्टे और कैंपिंग सुविधाओं पर दिया जोर। विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद। पेंशनरों को अक्टूबर में मिलेगा एरियर। क्लास 3 कर्मचारियों को 30% और क्लास 1 व 2 को 15% बकाया देने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच प्रस्तावित मैच अब मोहाली में खेला जाएगा। लगातार बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड प्रभावित हुई, जिसके चलते मैच के आयोजन को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रही। बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक ने धर्मशाला की आउटफील्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद मैच को मोहाली स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। बताया गया है कि धर्मशाला में लंबे समय तक हुई बारिश से आउटफील्ड को नुकसान पहुंचा है। मैदान को मैच के लिए पूरी तरह तैयार करना चुनौती बन गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित टेस्ट मैच को खराब आउटफील्ड के कारण धर्मशाला से इंदौर स्थानांतरित किया गया था। अब प्रस्तावित मुकाबला 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुबह 9:30 बजे से मोहाली में खेले जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश भर से 98,719 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 491 और महिला कांस्टेबल के 243 पद शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के लिए पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक और बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से की जाएगी। ग्राउंड टेस्ट स्थल पर सबसे पहले अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि की जाएगी, इसके बाद उसकी फिंगरप्रिंट के साथ डिजिटल फोटो ली जाएगी। आवेदन के रिकॉर्ड से इसका मिलान किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तकनीकी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थी की पहचान से जुड़े रिकॉर्ड को भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया है कि अक्टूबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू करने की तैयारी है। ग्राउंड टेस्ट में पुलिस लाइन और पुलिस ग्राउंड शामिल किए गए हैं और अभ्यर्थियों को निर्धारित दिन तथा रिपोर्टिंग समय के अनुसार बुलाया जाएगा। प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के नाम पर नदियों से रेत बजरी निकालने के मामले में सरकार ने कहा है कि परियोजना कंपनियां अपनी मर्जी से नदी से रेत बजरी नहीं निकाल सकेंगी। सतलुज और चिनाब नदी बेसिन में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं और निर्माण कार्यों के दौरान बड़ी मात्रा में रेत बजरी की आवश्यकता होती है। सरकार का कहना है कि परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के अधिकार अलग हैं, जबकि नदी से रेत बजरी निकालने की अनुमति अलग प्रक्रिया के तहत होगी। इसके लिए सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। यदि कोई परियोजना कंपनी बिना नीलामी प्रक्रिया के नदी से रेत बजरी निकालती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा में भी नदियों से निकलने वाली खनन सामग्री और उसके प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे को सब्सिडी और कंक्रीट निर्माण से बचने के लिए कैंपिंग सिस्टम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने के साथ लोगों को प्रोत्साहन और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने शिमला और सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कृषि और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को और प्रभावी बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालयों के पास जमीन और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यदि पौधे बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं तो व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है।
नशे की समस्या पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि नशे में संलिप्त लोगों की संख्या कुल आबादी का एक हिस्सा है, जबकि बड़ी आबादी को नशे से बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान बताया कि प्रदेश में विधवाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पात्र बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को कम करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना के लाभार्थियों तक सहायता समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के साथ बैठक के दौरान कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन एरियर का 30%, जबकि क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारियों को उनके पेंशन एरियर का 15% भुगतान अक्टूबर माह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं से अवगत है और उनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। वहीं अधिसूचना के अनुसार पेंशन भुगतान से संबंधित प्रक्रिया के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल का अलर्ट है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इन 3 दिनों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस बार बैंक ग्राहकों की परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि 26 सितंबर शनिवार और 27 सितंबर रविवार को भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल के कारण लगातार 5 दिनों तक बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध रहने की उम्मीद है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की प्रत्यक्ष मदद वाले कार्य इन माध्यमों से नहीं हो पाएंगे। यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, पेंशन से जुड़े मुद्दे, महंगाई भत्ते में समानता और नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल हैं। गगल एयरपोर्ट के विस्तार में मांझी खड्ड के पानी को नियंत्रित करने के लिए विशेष मास्टर प्लान तैयार किया गया है। योजना के तहत बरसात के दौरान खड्ड में आने वाले अनियंत्रित जल प्रवाह को रोकने के लिए व्यवस्था विकसित की जाएगी। मांझी खड्ड से लेकर इच्छी तक एक यू शेप चैनल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट क्षेत्र को बाढ़ और जल भराव के खतरे से बचाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत रनवे की ऊंचाई को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के बजाय जल प्रवाह को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए भी ये परियोजना उपयोगी बताई गई है। मांझी खड्ड में पानी का दबाव कम होने से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। परियोजना के तहत डायवर्जन प्लान को केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
5: उठाओ उठाओ, ठीक है, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनो, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलूं?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाओ कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोधव इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस प्यारी सी सुबह में सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ढेर सारी बातें और ढेर सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन जानकारियों को भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और साथ ही साथ श्रोताओं आपको ये बता दें कि आज हम बहुत सारी बातों के साथ साथ आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। हर बार खैर सुनवाते हैं, आप भी जानते हैं, और जानकारियों और गीतों का सिलसिला भी पूरे कार्यक्रम में जारी रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी दोस्त सुमन के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विचार की। श्रोताओं, कहते हैं सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, फिर अपनी गलतियों को छान लीजिए, बस अब स्वाद खुशियों का लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, बहुत कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन इन सभी सारी चीज़ों से हमें जूझते हुए ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना है और ज़िंदगी के सफ़र को हसीन बनाना है, हर पल को जीना है, हर पल में इंजॉय करना है। तो आइए इसी इंजॉय को और खूबसूरत बनाते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

जगाती है कयामत कोई।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 23 सितंबर, महीने के एंड तक हम आ पहुंचे हैं और कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ दिनों के बाद अगला महीना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ अगर मौसम के बदलाव की हम बात करें तो मौसम का बदलाव भी पूरी तरह से होने ही वाला है। कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है और हम भी महसूस कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओ, बदलाव जीवन में बेहद ज़रूरी है और इस बदलाव की कार्यक्रम में हम और भी बातचीत आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उमर कैद ले लेने की। अच्छा वो क्या है कि

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। तो हम मौसम के बदलाव की बात कर रहे थे श्रोताओं। तो जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि मौसम का बदलाव शुरू हो चुका है। अब बारिशें थोड़ी थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं, और ये जो दिन होते हैं काफ़ी रौनक भरे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और इन दिनों में हमें रखना होता है थोड़ा सा अपना ख्याल, क्योंकि बदलता मौसम कई बार बीमार भी हमें करता है। तो थोड़ा सा हमें फ्रिज के पानी से या ठंडी चीज़ों को खाने से परहेज करना है, क्योंकि बदलता मौसम कई बार गला ख़राब करता है, बीमारियाँ लाता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रोता बिल्कुल भी बीमार हो। हम चाहते हैं हमारे श्रोता जो है तंदुरुस्त रहकर इस प्यारे से जीवन को इंजॉय करते रहें। तो श्रोता, थोड़ा सा ठंडे पानी से नहाने से भी हमें अपना बचाव करना है। गुनगुने पानी से हम नहा लें तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा ठंडे पानी से नहाते हैं तो कई बार गर्म सर्द हो जाते हैं, बॉडी पेन हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो बदलते मौसम में इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ पहनावे का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे मौसम में पहनावा भी थोड़ा सा बदल जाता है। गर्मियों से हम थोड़ा सा सर्दियों के कपड़ों की ओर रुख करते हैं, और जैसे हमारे यहाँ बरसात ज़्यादा होती है, थोड़ी सी सिलन की वजह से कपड़ों से स्मेल आती है, तो उस तरह से हमें अपने गर्म कपड़ों को भी निकालने की तैयारियों में जुट जाना है, और थोड़ा सा उन्हें धूप भी लगवा लेनी है ताकि बरसात की स्मेल हमारे कपड़ों से निकल जाए। तो खैर श्रोताओं, बातें हमारी यूँ ही चलती रहेंगी, बातों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ है श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ फिलहाल गीत से पहले हम बात कर रहे थे बदलते के मौसम के बारे में। खैर, बदलता मौसम हम सभी के लिए जो है थोड़ा सा ध्यान और ख्याल रखने वाला होता है। इस मौसम में हमें थोड़ा अपना ध्यान रखना होता है। बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़्यादा श्रोताओं पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ संतुलित आहार भी हम सभी को लेना होता है। शरीर के तापमान को के अनुसार हमें अपना ध्यान रखना होता है, और उसी के अनुसार हमें कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, कपड़ों का हमें ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। मौसम के अनुसार हमारा पहनावा रहता है, और साथ ही साथ खान पान की अगर हम बात करें तो दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी की बात से मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे श्रोताओं का इस तरह से होता है कि वो क्या करते हैं कि सर्दियों में पानी पीना ही बंद कर देते हैं, कि पानी ठंडा होता है, नहीं पीते हैं। इससे क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे ड्राइनेस आ जाती है। वैसे भी सर्दियों के मौसम में देखा जाए श्रोताओं, तो बहुत सारी ड्राइनेस हम सभी को रहती है। उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, जैसे नारियल का तेल, बॉडी लोशन, बहुत सारी जो है हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो श्रोताओं, हमें पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता है तो आप गुनगुना पानी करके पी सकते हैं। ज़्यादा नहीं पीना है, सिप सिप करके पानी ज़रूर पिए। कम से कम हमें 8-10 गिलास पानी के ज़रूर पीने हैं, ताकि हमारा शरीर जो है उसमें नमी बनी रहे और विषैले पदार्थ जो है हमारे शरीर से निकलते रहे। तो श्रोताओं, हमें पानी का पूरा ध्यान रखना है। साथ ही साथ ताज़े फल और सब्जियों का भी सेवन करना है। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां जो हैं उसमें मार्केट में आती हैं, और ग्रीन सब्जियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, क्या होता है कि ग्रीन सब्जियां हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ग्रीन सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। साग सब्जियां बहुत सारी आ जाती हैं, और साग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। खूब सारी सब्जियों का इन सर्दियों में आप आनंद लें, इंजॉय करें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हल्दी और अदरक की, अदरक भी बहुत सारा होता है और हम खूब सर्दियों में खाते हैं, हमारे शरीर को ये गर्म रखता है। और संक्रमण से बचाने के लिए भी दैनिक डाइट में हम इसे शामिल कर सकते हैं। और हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी भी गुणों से भरपूर होती है। किसी को अगर चोट लग जाती है तो हम फटाफट से क्या करते हैं कि दूध में डालकर, पेशेंट होता है, मरीज होता है जिसे चोट लगी होती है, उसे देते हैं ताकि अंदरूनी चोट से उसे राहत मिले। तो छोटी छोटी बातों का श्रोताओं हमें पता होना चाहिए, और फिर उन चीज़ों के अनुसार ही हमें अपना खान पान भी रखना चाहिए। तो बदलते मौसम में अपने रखे ध्यान और ख्याल, उसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ श्रोतो, एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में हम अब बात थोड़ी सी और करेंगे बदलते मौसम के बारे में। जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव होता है और इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा जो मौसम के अनुसार होते हैं खान पान रहन सहन में बदलाव भी करना पड़ता है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो हल्के कपड़े लेयरिंग के हमें पहनने पड़ते हैं। तापमान के उतार चढ़ाव से बचने के लिए एक साथ भारी कपड़े पहनने के बजाय हल्के कपड़ों की लेयरिंग पहने। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम विदाउट स्लीव या हाफ स्लीव के कपड़े पहनते हैं तो फुल स्लीव के पहनना शुरू हमें कर देने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर ठंड लगे तो हम उनसे बचाव भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है श्रोता, हम दो पहिया वाहन चलाते हैं सुबह या शाम के समय तो बहुत ठंड लगती है, ऐसे में हमें अपना स्वेटर, हल्की फुल्की स्वेटर या हल्की फुल्की जैकेट यूं कह सकते हैं कि हम अपने साथ रख सकते हैं। सुबह या शाम को सफ़र करना हो तो हम उसे ज़रूर पहन सकते हैं। और बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी हम विदाउट स्लीव के कपड़े पहना सकते हैं। हमारे घर पे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो है अपना ध्यान और ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं। तो ये समय ऐसा होता है कि समय में हमें ही उनका ध्यान और ख्याल रखना होता है। एक समय ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारा ध्यान रखते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ध्यान और ख्याल रखना पड़ता है। तो उन्हें हम फुल स्लीव के वस्त्र दे सकते हैं पहनने के लिए, ताकि ठंड से बचाव बना रहे। अब बात थोड़ी सी करें श्रोताओं एसी की, तो एसी और पंखों से थोड़ी सी हमें सावधानी बनाकर रखनी है। सीधे तेज हवा या एसी के संपर्क में आने से बचाव करना है, इससे सर्दी जुकाम हो जाता है। कई बार क्या होता है, आजकल दिन के समय काफ़ी तेज और तीखी सी धूप होती है, जैसे हम गर्मी से बाहर से आते हैं फटाफट से पंखा लगाते हैं या एसी ऑन करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इससे भी हमारा शरीर जो है सर्द गर्म हो जाता है और हम बीमार पड़ने के चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से भी हमें बदलते मौसम में श्रोताओं ध्यान रखना है। अब श्रोताओं हम थोड़ा सा और बात करेंगे नींद के बारे में, कि पर्याप्त नींद हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। रोजाना समय पर सोने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बेहतर होती है, और जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं, समय पर सोते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो अपने आप को एकदम फ्रेश सा महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। नींद पूरी ना हुई हो तो पूरा दिन सुस्ती छाई रहती है और हम किसी भी काम को करने के लिए सही तरीके से तैयार नहीं हो पाते हैं। सारा दिन नींद लगी रहती है, सुस्ती छाई रहती है। और आवासियों की बात करें, झमाइयाँ भी हमारे श्रोता बहुत सारे कहते हैं आवासियों को, तो वो भी आती रहती हैं। तो थोड़ा सा श्रोता हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिलहाल हमें तो आपका रखना है ध्यान, तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ, श्रोताओं, गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, हम बदलते मौसम की खैर बात कर रहे थे। बदलते मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है और इस बदलते मौसम में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, ऐसे में उसको बूस्ट करने के लिए हमें संतरा, आंवला, नींबू का सेवन करना है। आप सभी श्रोताओं जानते हैं कि सर्द मौसम में जो है आंवला मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाता है। आंवले को हम किसी भी तरह से खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, अचार के रूप में खा सकते हैं, मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं, ये हर रूप में हमारे लिए अच्छा और फ़ायदेमंद ही रहता है। और नींबू का सेवन भी किया जा सकता है, ये नहीं कि सर्दियों में ज़्यादा नींबू पानी पिया जाए। आप कहेंगे कि हमारे श्रोता सर्दी में नींबू की सलाह दे रहे हैं, लेकिन श्रोता ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा हम नींबू पानी कभी कभार ले सकते हैं। रेगुलर लेना हमारे लिए सेहत के लिए सही नहीं होता है, बॉडी पेन करता है, ये ठंडी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभार हम लेमन टी बनाकर पी सकते हैं तो वो ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। इसके साथ साथ अदरक और हल्दी की तो हमने पहली बात कर ली, तुलसी जैसी चीज़ों को भी हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ श्रोताओ, कार्यक्रम में एक और ख़ास बात हम आपके साथ करने वाले हैं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए ज़रूर समय निकालें, क्योंकि ये हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज करने से शरीर फिट और हेल्दी रहता है। हम रोज़ कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो रोग भी हमारे पास नहीं आते हैं और प्यारे से जीवन को हम स्वस्थ रह के इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा योग, वॉकिंग और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारे जो है एक्सरसाइज करते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कुछ घर पर करते हैं। तो सुबह सुबह हमें जो है इस तरह से अपनी दिनचर्या की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। सुबह सुबह की धूप भी लेनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। और सर्दियों की धूप तो खैर सभी को अच्छी लगती है, हर कोई उसमें बैठना चाहता है और कुछ पल के लिए सुकून भी हर कोई चाहता है। कुछ पल के लिए धूप में ज़रूर बैठे, विटामिन डी धूप से मिलती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और सर्दियों में तो बड़ी प्यारी सी, बड़ी मीठी सी लगती है। तो इसी मिठास को और थोड़ा मीठा करते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: बधिर लोगों के अधिकारों को वास्तविकता बनाने का आह्वान करता है, जिसमें राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से उन तक पहुंच बनाने पर बल दिया गया है। यह दिन इस वर्ष इसलिए भी खास है क्योंकि यह बधिर संघ की 75वीं वर्षगांठ और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाए जाने के 20 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
1: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
2: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
3: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
2: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला में इन दिनों जापानी फल की फसल तैयार हो गई है और कुछ इलाकों से मंडियों तक पहुंचना भी शुरू हो गई है और किसानों को उनके उत्पाद के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
4: कुल्लू जिला के निचले क्षेत्रों में पिछले 7 सालों से जापानी फल का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है तथा जिला में करीब 216 हेक्टेयर भूमि पर जापानी फल का उत्पादन किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसकी पैदावार 700 टन के लगभग है। किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। जिला के विभिन्न इलाकों में करीब 50% जापानी फल का सौदा व्यापारियों ने बागीचों में ही कर दिया है। यूपी, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों से आए व्यापारी बागवानों के घर द्वार पहुंचकर जापानी फल के बगीचे खरीद रहे हैं। वहीं जापानी फल अपने गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है तथा फाइबर मात्रा भी अधिक होती है। इसका सेवन हृदय के लिए भी बेहतर माना जाता है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: लाहौल में इन दिनों इको पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 25 सितंबर तक चलने वाले इस पदयात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
5: दारचा से त्रिलोकनाथ को जा रही इको पदयात्रा के तीसरे दिन यात्रियों ने लाहौल की गहरी आध्यात्मिक विरासत को समझा। केलांग से रांगबी गांव की ओर बढ़ते हुए बिलिंग में विश्राम के दौरान भूटान के धर्मगुरु डोखम्पा खम्चो रिम्पो छेन्ने यात्रियों को संबोधित किया। उन्होंने 12वीं और 13वीं शताब्दी के महान तिब्बती बौद्ध योगी गोत्संगपा की साधना स्थली और उनकी पावन परंपराओं के बारे में बताया। रिम्पोचे ने कहा कि भागा घाटी और गर्सा क्षेत्र के जुड़े कई पवित्र स्थल गोत्संगपा की साधना से जुड़े हैं, जो लाहौल की सांस्कृतिक पहचान टूट हिस्सा है। ये पदयात्रा केवल पैदल चलने तक सीमित नहीं बल्कि हिमालय की प्रकृति, संस्कृति और धरोहर को सहेजने का अनूठा प्रयास है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और कुछ अन्य संगठनों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगे रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बैंक कर्मचारियों के काम के माहौल, पारदर्शिता और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला, दैनिक जागरण व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, हिमाचल में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान। दैनिक दिव्य हिमाचल की एक अन्य खबर है, हिमाचल में बनी 64 दवाएं जांच में फेल। दैनिक भास्कर की एक अन्य खबर है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट अवैध माना जाएगा वाहन का पंजीकरण। शिमला के संजौली समिट्री क्षेत्र में निर्माणाधीन भूमिगत टनल के ऊपर स्थित मकानों में आई दरारों व अन्य नुकसान के संबंध में कल शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित क्षेत्र में राजस्व विभाग के अधिकारी ऐसे मकानों को चिन्हित करेंगे जिनमें मुरम्मत की आवश्यकता है। NHAI ने अवगत करवाया कि वर्तमान में सुरंग निर्माण कार्यों के लिए किसी प्रकार की ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष मंत्रालय आज मना रहा 11वां आयुर्वेद दिवस, देश सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यापार को गति देने के उद्देश्य से 24 घंटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें खुला रखने का लिया निर्णय, अधिसूचना जारी। कुल्लू जिला में इन दिनों जापानी फल की फसल तैयार, मंडियों में पहुंचना हुई शुरू। बधिर लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। और लाहौल में इन दिनों इको पद यात्रा का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालु ले रहे भाग। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में हम फिर से वापस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारी। उन ढेर सारी जानकारियों में बात करें आज के इतिहास की, तो श्रोताओं 1965 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए 1965 के युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। 1932 की ओर थोड़ा सा रुख करें कि हिजाज और नजद के राज्यों को मिलाकर सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे वहां सऊदी राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया गया था। 1803 की बात करें तो असाई की लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना ने मराठा सेना को हराया था और 1846 में गौलत विदों ने मिलकर नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। इसके साथ साथ 1889 में प्रसिद्ध जापानी वीडियो गेम और कार्ड कंपनी निंटेंडो की स्थापना हुई थी। ये तो थी श्रोताओं आज के दिन की जानकारियाँ। जानकारी हम और भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को श्रोताओं को नहीं जानता है, हम सभी उन्हें बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। और 23 सितंबर आज के दिन 1908 में भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकवि और ओजस्वी लेखक थे। उनकी रचनाओं में रश्मि रथी और उर्वशी प्रमुख हैं। और साथ ही साथ महाराजे हरिओम का जन्म भी 23 सितंबर यानी आज के दिन 1895 में हुआ था। ये जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराज हरि सिंह थे, जिन्होंने दूरदर्शी निर्णय के कारण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। और साथ ही साथ प्रेम चोपड़ा की बात करें तो यह हिंदी और पंजाबी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता है, जिन्हें उनकी शानदार खलनायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनका जन्म भी आज ही के दिन 1935 में हुआ था। श्री निवास शास्त्री की बात करें श्रोताओं, तो इनका जन्म 23 सितंबर 1862 को देश के एक महान देशभक्त, प्रसिद्ध राजनेता और प्रशासक के रूप में हुआ था। इसके साथ थोड़ा सा हम और बात करें यूसुफ मेहर अली की, उनका जन्म 1903 में आज ही के दिन हुआ था। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इन्होंने ही साइमन गो बैंक और क्विट इंडिया जैसे नारे गढ़े थे। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को फिर से यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही।

श्रोताओं, फिलहाल आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम इस समय आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है और इसी स्वागत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर वर्ष 23 सितंबर यानी आज के दिन हम मनाते हैं। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर तथा कम सुनने वाले लोगों को अधिकारों और समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ इसकी शुरुआत की बात करें श्रोताओं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है और ये दिन बधिर लोगों के विश्व महासंघ की स्थापना की तारीख से जुड़ा हुआ है। तो श्रोताओं, सांकेतिक दिवस आज के दिन हम हर जगह मना रहे हैं। सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का नाम नहीं होती है, ये एक पूर्ण भाषा है। ये शरीर के भाव और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से विचार और भावनाओं को इसमें व्यक्त किया जाता है। अलग अलग देशों और समुदायों में अलग अलग सांकेतिक भाषा हो सकती है। इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो बधिर लोगों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है, शिक्षा और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करना होता है और साथ ही साथ सांकेतिक भाषा के उपयोग और सम्मान को बढ़ावा देना भी होता है। बधिर बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाना होता है और दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान के प्रति संवेदना भी व्यक्त करना होता है। तो श्रोताओं, ढेर सारी जानकारियां आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो भाषा में सांकेतिक भाषा को बढ़ाने की बात करें तो भारतीय सांकेतिक भाषा से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण पर काम किया जाता है। सांकेतिक भाषा को समझाना और उसका प्रयोग करना बधिर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करना है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां। जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 पर श्रोता इस समय फिर से जुड़ चुके हैं आप रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आज कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में स्थापित किए गए किताब घर हिमाचल की समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को पाठकों तथा सहजता से पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। ये किताबी घर स्थानीय लेखकों को व्यापक पाठ्य वर्ग से जोड़ने और प्रदेश में पठन संस्कृति को नई ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में गेटी थिएटर शिमला, देव सदन कुल्लू, कला केंद्र सोलन, लता मंगेशकर कला केंद्र ऊना, संस्कृति सदन हमीरपुर, बिलासपुर तथा मंडी में किताबघर संचालित किए जा रहे हैं और नाहन, सिरमौर तथा चंबा में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही वहाँ भी किताबी घर स्थापित किए जाएंगे। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: 14 इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम को लेकर श्रोता हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो हम अब थोड़ी सी और बातचीत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस के बारे में, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज पर बात करेंगे। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा बधिर, सुनने में असमर्थ लोगों के मानवाधिकार और सांकेतिक भाषा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद पहली बार ये दिवस 23 सितंबर 2018 को मनाया गया था। इसके साथ साथ श्रोताओ, 23 सितंबर 1951 को भी विश्व बधिर महासंघ की स्थापना हुई थी। इसे ऐतिहासिक दिन की याद में इस तिथि को चुना गया था। अब श्रोताओ, हम थोड़ी सी बात करेंगे वर्ष 2026 की थीम के बारे में। इस बार 2026 की थीम बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा भी आज ही के दिन की गई थी। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: खूब खूब आभार, आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, हम सांकेतिक भाषा दिवस पे आज बात कर रहे हैं। इस दिवस के महत्व की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज केवल इशारों का मेल नहीं है, बल्कि ये पूर्ण और प्राकृतिक भाषा है। अब थोड़े से इनके समान अधिकार की बात करें तो इस दिन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बधिर व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दैनिक जीवन में उनकी अपनी भाषा के जरिए समान अधिकार और सुगमता मिले। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह की बात करें तो ये दिन सितंबर के अंतिम माह में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह का मुख्य हिस्सा होता है। तो श्रोतो, ये तो थी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास अभी बाकी है। इस समय को हम आपके साथ पूरा व्यतीत करना चाहते हैं।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोता हम सांकेतिक भाषा पर बात कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा का इतिहास काफ़ी रोचक है। इसमें जो है इतिहास में कई पुरानी बातें भी हैं और शोधकर्ताओं की अगर हम बात करें तो उनका मानना ये है कि आदि मानव शिकार करते समय या दूर रहते समय मौन संवाद के लिए इशारों का उपयोग करते थे और प्राचीन ग्रीस में सुकरात का उल्लेख भी मिलता है। सुकरात ने हाथों और शारीरिक भाषा के माध्यम से संवाद करने की कल्पना करते हुए ये सवाल उठाया था कि आवाज़ के माध्यम से नहीं तो लोग कैसे संवाद करते होंगे। श्रोताओं सदियों से दुनिया भर में बधिर समुदाय में सांकेतिक भाषा ही विकसित होती रही है और उनमें से कुछ अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है और बधिर छात्रों को पढ़ाने के लिए संकेतों को अनुकूलित किया जाता है और आधुनिक संकेत भाषाओं की नींव पर टिके हुए हैं। तो श्रोता अपनी बातों को थोड़ा सा देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला

श्रोता, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम थोड़ी सी बात अगर जीवन की करें तो श्रोताओं कहते हैं जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगती है और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है ना। हम में से बहुत सारे श्रोता ऐसा महसूस भी करते हैं कि जब हम बहुत व्यस्त हों या बहुत खुश हों तो बड़ी जल्दी जल्दी दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, महीने बीतते हैं, हमें पता नहीं चलता है। और जब कभी टेंशन परेशानियों में हों, दुखों में हों तो वही ज़िंदगी बहुत लंबी लगती है। तो श्रोता, जीना तो है ही, हर हाल में हमें जीना है, तो क्यों ना थोड़ा सा खुश होकर मुस्कुराते हुए इस ज़िंदगी के सफ़र को पूरा कर ले। जब हम हंसते मुस्कुराते हुए इस ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करते हैं तो ज़िंदगी कब कट जाती है हमें भी पता नहीं चलता है। तो आइए थोड़ा सा और खुशहाल और रंगीन करने की कोशिश ज़िंदगी की करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। तो अब श्रोताओं, चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोता, थोड़ा सा जब हमारे पास समय होता है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दोस्तों के साथ जितनी बातें हो जाए कम है, लेकिन क्या होता है कि समय जो है हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम अपने श्रोताओं के साथ ज़्यादा बातचीत करें। खैर, कोई बात नहीं, आए दिन हमारी बातचीत तो आपके साथ होती ही रहती है। अब बातचीत के साथ चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलो।
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी हिसाब से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मार गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक खाकर

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एक बहुत ही खास बातचीत के साथ। दोस्तों, हर बातचीत आप सभी की जिंदगी से जुड़ी, हमारी जिंदगी से जुड़ी रहती है, प्रेरणादायक, जिससे कि हमें जिंदगी में जीने की एक नई सीख मिलती है, नया उत्साह मिलता है, जिससे हम जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी अहमियत को, सबसे खास बात कि अपनी लाइफ की वैल्यू को हम समझ पाते हैं। तो ऐसी बहुत कम बातें हमारे सामने आती हैं, क्योंकि जब खुद से जुड़ी बात सामने आए तो थोड़ा सा हम झिझक भी करते हैं, थोड़ा सा हम घबरा भी जाते हैं और अक्सर अपने बारे में सोचने से डरते हैं। लेकिन जिसने अपने बारे में सोच लिया वो सबसे महान, सबसे खास। जी दोस्तों, तो कहते हैं ना कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक युवा लेखिका जो है वो जुड़ी है। तो दोस्तों, अक्सर युवाओं की बात आती है तो आज के युवाओं का सफर आप सभी देख रहे हैं कि जिंदगी में राह भटक रहे हैं तो कुछ अपने सपनों को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो आज की ये बातचीत आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में निमृत शर्मा जी का, जो कि अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें और बहुत ही खास एक बात बतानी है आपको, लेकिन वो खुद बताएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। तो स्वागत है निमृत जी आपका हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आने का मौका दिया, यहाँ पर खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया। मेरा नाम निमृत शर्मा है, मैं क्लास 10th में आई एम पब्लिक स्कूल यूएल कैंड में पढ़ती हूँ और अभी मैं 16 वर्ष मेरे को लगा है। तो मैंने ये बुक लिखी है, अभी मैं रिसेंटली एक बुक की राइटर बनी हूँ, ऑथर बनी हूँ, जिसका नाम है रियल टॉक टीन्स एडिशन। और ये बेसिकली टीनेजर्स के बारे में है और मुझे इसको लिखकर बहुत अच्छा लगा। जिस दिन ये बुक मेरे हाथ में आई थी, सो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, आई वुड से लाइक इट। मेरा बर्थडे था और सबसे बेस्ट प्रेजेंट था मेरे बर्थडे का। और ये जब मेरे हाथ में आई थी तो मैंने सोचा कि कैसे 5 महीने के अंदर, तो मतलब खुद को भी सोच कर ये लगा था कि 5 महीने में ही कैसे, खुद पे भी वो एक क्वेश्चन उठा था। बट उसके बाद में हुआ कि कैसे वो पढ़ाई के साथ में, इतना प्रेशर के साथ में, बहुत अप डाउन आते हैं, 5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं और इतने कम समय में इतना कुछ लिखना बहुत डिफिकल्ट लगा इस लेवल पे। बट जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आगे जाकर इतना हो जाएगी। और मैं इन पेजों से लिखते लिखते यहाँ एक रेडियो स्टेशन पे अपने को खुद को प्रेजेंट करने आ जाऊंगी। बहुत अच्छा अनुभव है ये मेरे लिए और लाइफ का सबसे पहला स्टेप है ये मेरे।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप सभी ने सुना और जाना कि निमृत जी ने अभी ये 10th क्लास में पढ़ रही है और एक बुक लिखना बहुत बड़ी बात है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि टीन एडिशन पे इन्होंने बुक लिखी है, यानी कि युवाओं पे जो है इन्होंने बुक लिखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं और आप सभी सुनेंगे तो सचमुच आप सभी को भी इसमें, इसको पढ़ने की जिज्ञासा जो है वो जाग उठेगी और इनकी जो ये मेहनत है वो वाकई में दिख रही है इस बुक के हर एक शब्द में, हर एक पन्ने में। तो निमृत जी, सबसे पहले तो वैसे दोस्तों ने जान लिया है कि आपने बहुत प्यारी सी ये बुक लिखी है, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके बचपन से, आपकी शुरुआती दौर से, कि आपकी जो स्कूलिंग गई वो कहाँ से और किस तरह से इस सफर में आप यहाँ तक पहुंचे हैं।
1: सबसे पहले मेरा जो बचपन है वो एकदम अकेलेपन में गया है, क्योंकि मैं सिर्फ बड़ों के अराउंड में ग्रो की हूँ। जब जहाँ मेरे दादी घर है वहां पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, तो मैं बहुत बड़े लोगों के बीच में ग्रो हुई हूँ और वही शायद मेरी मेच्योरिटी का रीजन है। उसके बाद में मैंने वहां पे स्कूलिंग की है, न्यू होली मिशन चचिया में, नगरी में है वो। और वहां उस स्कूल ने मुझे शायद बहुत कुछ सिखाया, जो मैं आज जिस जहाँ पे हूँ वो ही मेरा बैकबोन है। और वहां पे मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी है, मतलब नर्सरी और केजी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए ये सोचकर कि शायद वो बैकवर्ड रीजन है तो हम लोग इतना ग्रो ना कर पाए, वो सोचकर हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पे न्यू कॉलोनी ब्लेड में हमने एक घर बनाया। फिर उसके बाद में स्कूल के बारे में हमें यहाँ पे इतना मालूम नहीं था, तो लोगों से थोड़ा जानने के बाद हमें पता चला कि आधुनिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। तो आधुनिक पब्लिक स्कूल में मैंने अपनी 1st से 3rd तक की पढ़ाई करी। उसके बाद में कोरोना आ गया, सो उसके बाद मेरे पापा आर्मी में सर्व करते हैं तो उन्होंने कहा कि आर्मी स्कूल इज द बेस्ट फॉर अस नाउ। तो फिर हम लोग आर्मी स्कूल में आ गए, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट में मैंने अपनी फोर्थ करी। आफ्टर दैट हम लोग पापा के साथ चले गए श्रीगंगानगर में, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर में मैंने अपनी फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ करी। उसके बाद में हम इधर आ गए, उसके बाद एट्थ नाइन्थ और राइट नाउ आई एम इन टेंथ। तो हम लोग यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट में।
0: जी, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मा हैं, मेरे भाई, मेरा भाई है छोटा, दादा दादी हैं, मेरे चाचा चाची और उनकी बेबी।
0: जी बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी फैमिली और कितना प्यारा सा इनका अभी तक का यहाँ तक का सफर रहा है। चेंजेस भी हुए, स्कूल भी चेंज किया, लेकिन फिर भी इनकी जो लगन है और मेहनत जो है वो जारी रही, कंटिन्यू रही। क्योंकि अक्सर हमें सुनने में यही मिलता है कि जब बच्चे को बार बार स्कूल चेंज कराया जाता है, बार बार यहाँ वहाँ जो है एडमिशन दिलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान जो है वो भटक जाता है, दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है निमृत जी का, जो कि अपनी इस लगन को कंटिन्यू रख के यहाँ तक पहुंचे हैं और बुक लिखना एक बहुत बड़ा उनके लिए मुकाम है, बहुत बड़ी एक मंजिल को हासिल किया है उन्होंने। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि जब शुरुआती दौर में ही मतलब कि हमारे हौसलों को ये उड़ान मिले तो आगे का सफर और भी खूबसूरत और भी प्यारा हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की, और उसके बाद फिर से वापस आते हैं आप सभी के लिए इस बहुत ही खास बातचीत के साथ जुड़ने के लिए।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और बहुत ही खास मेहमान आज के हमारे स्टूडियो में आप सभी के साथ जुड़े हैं निमृत शर्मा जी, जो कि अपनी लाइफ की कुछ खास बातें, जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। हो सकता है कि इनसे जो है बातें सुनकर बच्चों को थोड़ी प्रेरणा मिल सके, जो कहीं अपनी जिंदगी में कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या अपने सपनों को लेकर कहीं थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन है। तो कहते हैं ना, एक दूसरे की जिंदगी की कहानी सुनकर भी हमें प्रेरणा मिलती है, हमें जो है वो एक राह मिलती है देखने को। तो आइए जानते हैं और भी कुछ खास बातें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्यारी सी, आप सभी को सभी जानते ही हैं कि किताब लिखी है इन्होंने टीन एडिशन पे। तो निमृत जी, अभी हमने बात की कि किस तरह से आपकी स्कूलिंग रही, किस तरह से आपका जो है ये यहाँ तक का सफर रहा। अब चलते हैं आपके लिखने के दौर में। तो आपने ये बुक लिखी है, तो आपको मतलब ये लिखने का शौक बचपन से था, या फिर मतलब कि पढ़ाई के साथ बाद में जागृत हुआ, या किसी को देखकर आपको ये प्रेरणा मिली? कोई ऐसा रोल मॉडल है आपकी जिंदगी में जिनको देखकर आपको लगा कि नहीं लिखना चाहिए? तो किस तरह से ये शौक आपके अंदर आया?
1: जी हाँ, हर किसी का शौक किसी कहानी के साथ होता है, तो ऐसा मेरे में इतनी कोई कहानी नहीं है, बट बचपन से ही मेरी हैंड राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, तो मुझे कैलीग्राफी वगैरह में बहुत शौक था, और फिर वो मैं करती भी थी, घर पे भी खुद से भी करती थी, और स्कूल में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया, बहुत मतलब अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। उसके बाद में मतलब लिखने का बहुत शौक था बचपन पहले से ही, फिर बड़े होते होते मेरे को थोड़ी पोम्स वगैरह लिखने का, थोड़े थीसिस वगैरह लिखने का बहुत अच्छा मतलब लगता था मुझे लिखना, वो हाथ मतलब हैंड रिटन में भी और वैसे भी, तो कोट्स वगैरह में लिखती रहती थी। फिर उसके बाद में जब अभी पहले तो इतने बचपन में इतना कोई ढंग से पता नहीं था कि कुछ हो सकता है आगे, बट जैसे बड़े हुए तो हमने बहुत कुछ सीखा देखा, और फिर हम यहाँ APSC ओल्ड कैंट में आए, तो यहाँ पे दीदी है, उन्होंने मतलब वो एज अ यू कैन से वो मेरा रोल मॉडल, मैंने उन्होंने किताब लिखी है द लैंड ऑफ सोल्स, जो मतलब बहुत अच्छी किताब है, और उसमें उन्होंने भी 10th में अपनी बुक लिखी है, बहुत अच्छी बात है। और फिर मतलब मैंने उनसे बात करना चाहा, एंड आई टॉक टू हर, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, बट फिर बस वही थोड़ा सा हो जाता है, तो वही कुछ हुआ लाइफ से थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया।
0: ओके
1: अब तो लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है, तो मैंने अपना मई में लिखना स्टार्ट किया था, मेरे गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट किया, फिर हर शाम मैंने लिखा थोड़ा थोड़ा, छुट्टियों में लिखा, फिर स्कूल लग पड़े, 10th है, बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल,
1: तो थोड़ा थोड़ा हर शाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, किस दिन लिखा होता था, किस दिन नहीं, किस दिन बहुत लिखने का मन करता था, किस दिन बिल्कुल लिखने का मन नहीं करता था, थोड़ा थोड़ा हर शाम, और फिर बुक तैयार हो गई, हाथ में आ गई।
0: कितना समय लगा आपको बुक लिखने के लिए?
1: 5 महीने।
0: 5 महीने। तो अक्सर निमृत जी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का वैसे बहुत शौक होते हैं, किसी को डांस करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, तो

0: उसी के बीच किसी को स्पोर्ट्स का भी शौक रहता है। लेकिन ये जो आज का समय है, देखा देखी का समय है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है एक दूसरे के बच्चे के साथ जो कंपैरिजन, जो आपकी बुक में भी ये टॉपिक है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बच्चा इस फील्ड में बहुत बेहतर है, तो क्यों ना हमारा बच्चा भी उसी फील्ड में बेहतर हो, भले ही उनके बच्चे के शौक अलग हो, उनकी चॉइसेस अलग हो, उनके सपने अलग हो। तो आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा और किस तरह से उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की?
1: जैसा आपने जिक्र किया, मेरी किताब एक मतलब असली लाइफ में जो होता है, रियल लाइफ पे बेस्ड है
0: जी,
1: और इसमें वही सब है जो हमारे साथ आजकल के टीनेजर्स, मैं भी एक टीनेजर हूँ, जो मैंने फेस किया है, और फेस इतना कुछ तो इसमें इतना जो मैंने किया है वही सब नहीं है, बट स्टिल मतलब जो मुझे लगता है और जो मैंने देखा है जहाँ तक अभी मेरी टीनेज हुई है वहां तक, तो वो मैंने इसमें लिखा है। और अभी लाइफ है तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है, फ्रेंडशिप इज ऑल्सो अ नेसेसरी थिंग इन इट, फैमिली का प्रेशर भी होता है, सपोर्ट भी होता है, बहुत कुछ चीजें आती है। तो मेरी लाइफ में मेरी फैमिली इज अ वेरी बिग सपोर्टर इसमें, ठीक है, वेरी बिग सपोर्टर। उन्होंने मुझे हर एक फील्ड में सपोर्ट किया है, मुझे जो मैं करना चाहती हूँ, वो चाहते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं उससे भी ज्यादा करूँ, जहाँ पे मैं हूँ मैं उससे भी आगे बढ़ूँ, और एक कंपैरिजन के बाद, और वो इस जमाने में इस लाइफ में बहुत जरूरी है, जरूरी पार्ट है कंपैरिजन। शायद कंपैरिजन ना हो तो हम लोग करना है ना चाहेंगे,
0: बिल्कुल
1: कंपैरिजन हर जगह सही नहीं है, बट कुछ फील्ड्स में कंपैरिजन अच्छा होता है। और अगर कंपैरिजन स्टडीज में है तो मे बी हो सकता है, हर एक बच्चा हर एक उसका एक लेवल होता है कि वो वहां तक कर सकता है, और हर एक फील्ड में हर एक बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की डीमोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं, और कुछ होते हैं जो मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं। तो मैं तो एक मोटिवेशन से मोटिवेट हूँ, मुझे डीमोटिवेट करोगे मैं इमोशनल हो जाऊंगी, तो हर एक का अपना पेस होता है ग्रो करने का।
0: जी बिल्कुल सही कहा है रोसो निमृत जी ने कि कहते हैं ना कि पहलू दो ही होते हैं, तो कहने की बात कोई किसी भी तरीके से कह रहे हैं, लेकिन वो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। कई बार कुछ भले ही किसी ने मतलब कि पिंच करने के लिए कहा हो, बुरा ही कहा हो, लेकिन वो बात हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, हमारे में एक ऐसा जुनून जगा देती है, एक ऐसा जज्बा जगा देती है कि वो हमें मंजिल तक लेकर जाती है। वही निमृत जी के साथ हुआ है, तो उन्हें आज यहाँ तक पहुँचाने में वो छोटी छोटी सी बातें जो है वो सपोर्टिव है। बिल्कुल दोस्तों, तो हर बात को गलत ही लिया जाए ये जरूरी नहीं है, हमें हर बात को एक सकारात्मक तरीके से अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना चाहिए, फिर हम जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं होगी और जिंदगी बेहतर बनती जाएगी। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से वापस आते हैं आप सभी के साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: 91.5 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आज की ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही प्रेरणा भी ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों से जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। उनकी जिंदगी किस तरह से, वो खुद को तो मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने जैसे दोस्तों को, अपने जैसे हम उम्र के बच्चों को भी वो मोटिवेट कर सकें, तो वो कोशिश जरूर उनकी सफल होनी चाहिए। ये आप सभी के सपोर्ट से सफल हो सकती है। तो आइए अपनी बातचीत में आगे बढ़ते हैं और फिर से चलते हैं निमृत जी की ओर। तो निमृत जी, जैसे अभी हमने बात की कि किस तरह से आपका ये शौक जो है आपको यहाँ तक लेकर आया और किस तरह से आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, अब आते हैं आपकी बुक पे। तो थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बताइए कि आपने क्यों ये बुक जो है सिर्फ युवाओं पे लिखने का आपने इस पे डिसीजन लिया, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, अगर हम देखें बहुत ज्यादा इश्यूज भी हैं हमारे आसपास, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे युवाओं के ऊपर लिखना चाहिए, टीन एडिशंस पे, वो भी रियल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें?
1: जी हाँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ और मुझे लगता है कि एक टीनेजर की स्थिति को अच्छे से समझ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ, सामने वाला जो टीनेजर है वो भी उसी दौर से गुजर रहा है, तो शायद हमारे कहीं पे
0: थॉट्स मैच हो सके,
1: कहीं पे हम लोग मिल जाएं और कहीं पे हो सकता है कि हम एक दूसरे को सपोर्टिव रहे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बुक सिर्फ बस उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए है जो रियली वो चाहते हैं कि हम लोग मे बी अकेले हैं, बट वो अकेले नहीं है, उन्हें फील नहीं होने देना है, और उनके जैसे और भी हैं, मैं भी जैसे हूँ, ठीक है, टीनेजर्स अकेले नहीं है जैसे वो सोच रहे हैं। टीनेजर्स को लगता है कि शायद हम लोग सोच रहे हैं, क्या पता सामने वाले को अलग लगे, क्या पता हमें ही लगता हो वैसा सामने वाले को ना लगे। तो मैं उनको बेसिकली ये बुक ये बताना चाहती है कि वो अकेले नहीं है, उनके सामने और भी सभी हैं जो उन्हीं के जैसे हैं, तो अकेले नहीं है वैसे फील करने वाले, सामने वाले टीनेजर्स जो भी हैं वो सब भी वही फील कर रहे हैं। और इस बुक में जैसे आपको बताया है, मैंने सब रियल लाइफ के बारे में बताएगी, ऐसा कोई भी वो नहीं है जो आपको लगेगा कि ये शायद हमारी लाइफ से जुड़ा नहीं है, और इसमें हर एक चीज है जो लाइफ से जुड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: टीनेजर्स एक ऐसी फेज है जिसमें बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ, इमोशन से भी, फ्रेंडशिप से भी, फैमिली प्रेशर से भी, सपोर्ट से भी, और आपके स्टडीज से भी आएंगे, आपके वेलबींग से भी आएंगे, आपके ड्रीम्स से आएंगे, गोल्स से आएंगे, बहुत कुछ है जो हमारे टीनेज लाइफ में चेंजेस लाएगा। तो थोड़ा बुक के बारे में मैं आपको रिव्यू बताऊं इसका, तो इसमें बेसिकली स्टार्ट होता है कि खुद के जानने के बारे में, आप क्या हो, कैसे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, सामने वाला क्या जज करेगा वो मैटर नहीं करता।
0: बिल्कुल,
1: हम लोगों को खुद पे देखना है, लाइफ तो बहुत कुछ सिखाती है और लोगों का कहना तो हमें मानना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मानना है, खुद का ही सुननी है, सुनना सबका, करना अपना है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस सामने वाले की स्ट्रेंथ और सामने वाले की वीकनेस से कभी नहीं मिल सकती है, वो डिफरेंट ही होगी। और फिर फ्रेंडशिप सबसे
0: इम्पोर्टेंट
1: पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे फैमिली इम्पोर्टेंट है तो फ्रेंडशिप भी वैसी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स वो नहीं है जो तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहे, फ्रेंड्स वो हैं जो तुम्हारे साथ सपोर्ट में रहे और तुम्हें कहे कि तुम कैसे भी हो बट परफेक्ट
0: हो।
1: फ्रेंड्स वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे, वैसा नहीं कि तुम्हें बस ऐसे कि हाँ ठीक है, बट जो तुम हो वहीं पे, गलत हो तो गलत में और सही हो तो सही में। और फैमिली प्रेशर, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। फैमिली प्रेशर जो है वो बहुत बुरा होता है, फैमिली प्रेशर हर किसी को नहीं होता बट जिसको भी होता है तो वो बहुत बुरा होता है। प्रेशर एक ऐसी चीज है जो इंसान को मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, जहां पे फैमिली सपोर्ट है वहां पे हर कोई ग्रो कर जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा से बड़ा इंसान हो। फैमिली एक ऐसी चीज है जो हमारा सबसे पहला स्कूल है, जो हमें सबसे पहली शिक्षा देता है, चाहे वो एक बच्चा बड़े को सिखाए चाहे एक बड़ा छोटे को सिखाए। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि स्कूल और एकेडमिक प्रेशर हर किसी की लाइफ में आता है, हर कोई शुरू से फेलियर नहीं होता, हर कोई शुरू से टॉपर नहीं होता, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, मेडियोकर भी होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं। तो फेलियर्स ऐसा तो नहीं है कि लाइफ के हर एक फेज में फेल करेंगे, और टॉपर्स ऐसे नहीं कि वो हर एक लाइफ में टॉप करेंगे, तो वैसा ही है। और हमें अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में यूज करना है। लाइफ एक ऐसी चीज है जो हम पे डिपेंड करती है, हाउ वी स्पेंड आर टाइम इन आर लाइफ, चाहे तुम अच्छे से कर लो, चाहे तुम जैसे, अगर तुम अपनी लाइफ अच्छी बनाना चाहोगे तो अच्छी बना सकते हो, बुरी बनाना चाहोगे तो बुरी बना सकते हो, सब खुद पे डिपेंड करता है। फिर आता है ड्रीम्स एंड गोल्स। ड्रीम्स वो है जब बचपन में बच्चों को पूछते हैं क्या बनना चाहोगे, जी हम तो डॉक्टर बनेंगे, जी हम तो पायलट बनेंगे, जी अब तो जेन्युइनली यही डॉक्टर इंजीनियर टीचर पायलट ये वो एंड ऑल।
0: बिल्कुल,
1: बट ड्रीम जो है ना जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे वो तो बचपन में एक वो है कि बस एक ड्रीम सपना है।
0: बिल्कुल
1: yes, बस सपना है, सब कुछ आसान लगता है, हो जाएगा हो जाएगा। बट जैसे जैसे ग्रो करते हैं हम लोग, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग लाइफ के बारे में थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं। और गोल एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अपने ड्रीम तक पहुंचने दे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अपने ड्रीम तक पहुंच नहीं सकते, बट वो है कि तुम्हारा तुम ऐसा कर क्या रहे हो अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, वो जरूरी है। और बड़े होते होते कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं सपने देखना कि नहीं बस गिव अप कर देते हैं, बट वो अच्छी बात नहीं है। सपने देखना बहुत जरूरी है और उन्हें चेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: फिर सबसे जरूरी जो अभी टीनेज लाइफ में चल रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अच्छे से यूज करो तो अच्छा, बुरे तरीके से यूज करो तो बहुत ही बुरा
0: है।
1: तो वैसा है, और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जो हमें बहुत अच्छा बना सकती है और बनना चाहे तो बहुत बुरा भी बना सकती है, तो वो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। और टीनेज माइंड में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ, मैं भी टीनेजर हूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता है और सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता है। घर वाले अलाउ नहीं करते हैं बट स्टिल वी वॉन्ट टू डू इट।
0: फिर कैसे खुद को मैनेज करते हो?
1: वो हो जाता है घर से बैलेंसिंग बन के, सब कुछ बैलेंस हो ही जाता है, वो करना ही पड़ता है। उसके बाद हमारे वेलबींग पे आती है बात, हमारे हम लोग कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, सब हमारे मेंटल वेलबींग पे डिपेंड करता है। हम लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं सामने वाले को, हमारे एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं, हमारे पोस्चर्स कैसा रहता है सबके सामने, वो सब डिपेंड करता है हमारे मेंटल वेलबींग पे।
0: जी।
1: और सबसे जरूरी है हमारे इमोशंस को हम लोगों को कंट्रोल करना, हम लोगों को इमोशंस को समझना। इमोशंस एक पन्ने की तरह है, जब दिल करता है हवा आती है तो पलट जाते हैं, जब दिल करता है दूसरी हवा आती है तो पलट जाते हैं।
0: रेगुलेट करना मतलब समय के हिसाब से हमें रेगुलेशन जो है इसमें जरूरी है।
1: हाँ जी
0: जी।
1: और वो वैसे में भी हो जाता है, हवा की तरह हवा आएगी तो वो पलट जाएगा पन्ना, और हवा जाएगी तो फिर से पलट जाएगा। और इमोशंस जो है वो सब हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस हो ही जाते हैं। तुम कितना भी दिल में छुपाओगे वो तुम्हारे फेशियल पे आ जाएगा,
0: और वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है, उनके बिना तो लाइफ शायद अधूरी है।
1: और इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। इमोशंस ऐसी चीज है जो हमारे अंदर रहकर भी हमें हर्ट कर सकती है और हमारे बाहर आकर भी हमें हर्ट कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि किसी को हर्ट करना है, किसी के इमोशन को हर्ट करना है इस टाइम पे बहुत बुरी चीज है। और टीनेज में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज है। उसके बाद में सबसे जरूरी जो है हमारी लाइफ में, आज जो हम डिसीजन लेंगे वो हमारी कल की लाइफ डिसाइड करेगा। हम आज क्या डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे कल जो हम लोग बनेंगे, जो हम करेंगे, कल जो हमारा होगा उस पर सब डिपेंड कर रहा है हमारा आज का डिसीजन। तो डिसीजन सबसे सही होना चाहिए, वो हमें लेना सबसे जरूरी है। एक बार में सोच लिया कि ठीक है जी कल तो हमने पढ़ाई करनी है तो करनी है, तो सोचना और करना दिन रात का अंतर है। तो डिसीजन जो है वो एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए, वाइज होने चाहिए और रियल होने चाहिए बेसिकली डिसीजन। डिसीजन ऐसे नहीं कि जो हो नहीं सकता बट वी थिंक ऑफ कि चलो हो जाएगा, बट एकदम रियल होने चाहिए। उसके बाद में आपकी कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया आपकी बातचीत पे सब कुछ निर्भर करता है, कैसे आप सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं वो सब अंदर आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है, आपको क्या संस्कार मिले हैं आपकी बातचीत से पता चल जाए।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप नर्वस हो शायद आपको घर में वैसा ही माहौल हो, अगर आप बहुत अच्छे से हो शायद आपको घर में वैसा माहौल हो। तो हर किसी के लैंग्वेज, अब देखो लैंग्वेज डिफरेंस आता है, हर लैंग्वेज एक बैरियर बनता है स्टेट टू स्टेट।
0: बिल्कुल।
1: बट एक दूसरे के इमोशंस तो हर कोई समझ ही जाता है। इस लाइफ में ऐसा ही है कि इमोशन समझना बहुत आसान है, बेशक लैंग्वेज नहीं। लीडर आपको वहां नहीं बनना है जहाँ पे क्राउड है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे आपको सबको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जहाँ पे आपको सबको कंट्रोल करना है, वहां पे लीडर नहीं बनना है। लीडर आपको अपनी लाइफ में बनना है।
0: अक्सर हम दूसरों की लाइफ में बनते हैं।
1: हमें खुद को लीड करना है, औरों को लीड नहीं करना है। औरों को लीड करने से पहले हमें खुद को लीड करना है, खुद की लाइफ का लीडर बनना है। और वो लीडर आप तब बन सकेंगे जब आप एकदम इमोशन फ्री होंगे। इमोशन फ्री इन द सेंस, ऐसे नहीं इमोशनलेस ही दूसरों का पता ही नहीं चल रहा। लीडर इन द सेंस मतलब आप सबकी दुख स्थिति को समझ सकते हैं, सबकी खुशी को समझ सकते हैं, खुशी को छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओगे तब आप लीडर बन सकते हो अपनी लाइफ।
0: जी।
1: फिर सबसे जरूरी आता है हमारी लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स स्कूल में हम लोग बहुत कुछ स्किल्स सीखते हैं, स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टीचर्स होते हैं जो हमारी बहुत केयर करते हैं और कभी कभी डांटते भी हैं, बट वो डांटना सही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो लाइफ स्किल्स हमें स्कूल सिखाता है, बहुत सी लाइफ स्किल्स सिखाता है, और उसको स्किल्स को सबको इम्प्लीमेंट करना हमारी लाइफ सिखाती है। लाइफ के फेज, लाइफ की टाइमिंग जो है, मतलब लाइफ में जो भी हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो एकोमोडेट करना है वो हमारी स्किल्स काम आती है हमारी लाइफ में। तो हमारी लाइफ जो हमें स्किल्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि किस तरह से जो है निमृत जी ने अपनी बुक में ये छोटे छोटे से टॉपिक्स को पार्ट बनाया है, और वाकई में ये रियल जिंदगी से जुड़ी बहुत ही खास बातें हैं। आप सभी अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो सचमुच दोस्तों आपको लगेगा कि नहीं, ये हम सभी की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे हम खुद की वैल्यू को कर सकते हैं, कैसे हम खुद को समझ सकते हैं। निमृत जी, आपने इसमें सबसे पहला टॉपिक यही लिया है कि खुद को जानना जो है बेहद जरूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की डेट में हम खुद को जान पाते हैं?
1: शायद नहीं
0: जान पाते, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है।
1: समय नहीं है, दूसरा हम लोग दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट,
0: दूसरों के, और देखा देखी वही सोशल मीडिया का यूज हम ज्यादा करते हैं। तो आपने भी यहाँ पे जिक्र किया था कि सोशल मीडिया का मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं खुद को मेंटेन करती हूँ। तो दोस्तों, मन सबका करता है, ऐसी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज सबके पास होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है तो वो तब जाके इन फील्ड्स को चूज करते हैं। सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ के लिए बेटर क्या है और हमें किस तरह से इसको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस खास बातचीत को निमृत जी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, प्रेरणादायक बनाते हैं। तो निमृत जी, हमने बहुत ही खास बातें जो है अपने दोस्तों के साथ साझा की है कि किस तरह से आपने किस किस टॉपिक को इस बुक में इंक्लूड किया है, बच्चे से जुड़ी को, क्योंकि जब हम खुद से जुड़ी बातें शेयर करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो अब इसके आगे का सफर, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, 10th क्लास का वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे पढ़ाई का, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि आप इसमें एडजस्ट कैसे, आपने जैसे कहा ना कि कुछ मन करता था कुछ दिन लिखने के लिए, कोई दिन ऐसा भी होता था कि बिल्कुल मन नहीं करता था लिखने के लिए, तो वहां पे कहीं आपको ऐसा लगता था कि नहीं मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, शायद मुझे नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कभी हुआ?
1: शुरुआत में मैंने 10th क्लास को इतना इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया था और मुझे लगता है कि मेरे से पढ़ाई एडजस्ट हो जाती है शायद।
0: मतलब आप टाइम एडजस्ट करते हो, प्लानिंग करते हो, या फिर जैसे जब मन किया तभी लिखना, उस इस तरह कैसे होता है कुछ?
1: एक सबसे सच बात कहूँ तो टाइम टेबल डजंट वर्क एट ऑल। आज बना दो 5 बजे उठोगे, कल 5 बजे अलार्म बजेगा, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 6 बजे जाते हैं और मेरे साथ एक्चुअली ऐसा होता है, तो टाइम टेबल मेरे बस का नहीं और टाइम टेबल एक्चुअली इस टाइम पे किसी के भी बस का नहीं है, बहुत ही रेयर होता है
0: जी।
1: तो जैसे स्कूल से आने के बाद, स्कूल सुबह जाते वक्त तो मूड में ऐसा है कि बस स्कूल जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, और पहले होता था कि स्कूल जाने का प्रेशर होता था, बट अभी बहुत माइंड फ्री होकर स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके बहुत खुशी होती है पता नहीं क्यों। और फिर उसके बाद में स्कूल से मेरा ट्यूशन होता है, ट्यूशन से घर आती है, तो मैं मतलब घर पे 5 बजे पहुंचती हूँ, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है 5 से 10 के बीच में, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट भी नहीं जा सकती, मीन्स बहुत ज्यादा जरूरी
0: है। बिल्कुल।
1: तो इन 5 घंटों में अब मेरा मन करे तो मैं पढ़ू, मेरा मन करे तो मैं लिखू। कभी टेस्ट होते थे तो टेस्ट का पढ़ाई करना है, और 10 बहुत जरूरी है जैसे आपने भी कहा, और वो एक्चुअली वैसे बहुत जरूरी है, बोर्ड्स हैं। और फिर उसके बाद मैं जब मन करता था तभी लिखती थी, थोड़ा किया तो अभी लिख दिया, थोड़ा किया तो नहीं लिखा, कभी तो बिल्कुल ही नहीं लिखती थी, ऐसे नहीं कि 5 महीने लगातार ही हर रोज ही दिन रात एक करके, ऐसे नहीं, कभी मन करता था तो कभी लिख देती थी, कभी रात को नींद उठती थी, जैसे अगले दिन छुट्टी है तो वो तो होना ही होना है, रात को नींद खुली ही खुली है, तो उस तब थोड़ा ऐसे ही बस थोड़ा ऐसे हो जाते थे ट्रॉमेटाइज ही, क्या करे क्या करे क्या करे, फिर उस टाइम थोड़ा लिख लिया वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके वैसे वैसे। और ऐसा नहीं कि 10th की पढ़ाई को बिल्कुल वो नहीं किया, अब एग्जाम बहुत जरूरी है, 10th क्लास बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई और इसको बहुत उससे मैनेज किया है मैंने
0: जी। तो आगे जो है आप इस फील्ड को आगे लेकर जाना चाहेंगे, मतलब लिखने का शौक जो है आप इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे आगे? अगर हम बात करें इन फ्यूचर आपका बच्चों का सपने, जैसे हमने आपने इसमें भी बात की है कि अपने सपने होते हैं उन्हें अचीव करना होता है, तो आपका जो है बड़े होकर क्या सपना है बनने का?
1: तो अभी जैसे आपने कहा कि इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो अभी मेरा बोर्ड्स 5 महीनों में, अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, अभी मेरा बोर्ड्स 5 महीनों में, तो मुझे उसके लिए तो जी तोड़ के मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि बहुत जरूरी है ये मेरे लिए। तो ऐसा है कि अभी तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा मैं कर सकूं, बट एकदम ना हो पाए। 90% स्टडीज को तो 10% टेस्ट को बिल्कुल छोड़ना इज नॉट गुड, क्योंकि बिल्कुल छोड़ दिया तो बाद में पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो अभी जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी एक हैंड रिटन मैगजीन होती है वहां पे बिलासपुर में पब्लिश होती है, मैंने उसके लिए अपनी एक कविता जो है वो दी है, और कविता का ये है, कविता का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि कभी कभी जो खामोशी है वो भी बोलती है, और ये बहुत अच्छा लगा उन्हें और उन्होंने कहा कि वो पब्लिश करेंगे।

0: अगले माह तक पब्लिश हो जाएगा। और ऐसे से छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी जहां जहां मुझे मिलती है मैं वहां पे एनरोल होना चाहूंगी, बट एकदम इसे छोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग, तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ दूंगी। और मेरे आपने ड्रीम के बारे में बात की, तो बचपन से सुना है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, मेरा दिल एकदम छोटू सा है, तो ये डॉक्टर इज नॉट मेरे बस का नहीं है। होता सब कुछ बस का है, करने की देरी
1: नहीं, मतलब आप बाकी में करना क्या चाहते हैं, मतलब आपके मन से जो आपकी इच्छा है वो आप क्या करना चाहते हैं?
0: मैं फ्लावर बनना चाहती हूँ।
1: ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बस की बात है। देखिए मेहनत तो हर कहीं लगेगी, है ना। तो सही बात यही है कि हमारी जो एक कहते हैं ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम किसी चीज को अगर बोलेंगे तो बच्चे फिर ना एक साइड ध्यान लगा पाएंगे ना दूसरे साइड ध्यान लगा पाएंगे, और फिर वो एक बीच मझधार में फंस कर रह जाते हैं, फिर पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं गिल्ट होता है और बच्चों को भी रह जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है निमृत जी ने कि वैसे तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो लॉयर में, मुझे लॉयर पसंद है बनना। तो जरूर जैसा इनका मन करेगा, जैसे जहां ये कंफर्टेबल खुद को फील करेंगी, ये उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगी, है ना। तो निमृत जी, अभी हम बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि अगर ये बुक जो है वो परचेज करना चाहें, लेना चाहें, तो ये उन्हें कहाँ मिल सकती है, ऐसे अगर आपके मतलब हमारे दोस्तों को बताना चाहें तो प्लीज हम बताइए।
0: जी हाँ, तो जैसे ही मैंने पब्लिश करवाई थी बुक, तो थोड़े दिनों बाद मैं खुद स्टोर्स पे ये रखवाने गई थी ताकि मेरा शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उन्होंने खुद रखवाई है। तो ये धर्मशाला स्टोर है, वहां पे मैंने अभी रखवाई है, जैसे गुरुजन स्टोर है, गुरुजन मार्केटिंग, प्रीति स्टेशनरी स्टोर है, फिर अमर स्टोर है, फिर डिडबाल बुक स्टोर है, बहुत बड़ा बुक स्टोर है
1: जी।
0: तो वहां पे मैंने रखवाई और उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि मुझे ये आगे बढ़ाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मैं ये भी अपने दोस्तों तक बात पहुंचाना चाहूंगी कि इस सफर तक पहुंचने के लिए अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आई या फिर इजी रहा?
0: फाइनेंशियली मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई, मेरा तो सब फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट मेरे फादर साहब के पास है
1: जी।
0: तो उन्हें आई होगी तो मालूम नहीं आई होगी फॉर श्योर, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया
1: जी।
0: और
1: नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे अगर बच्चों में ये होप हो कि हम भी लिखें, मतलब उनका होता है ना कि कुछ बच्चों में शौक होता है लेकिन उन्हें ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत हाई लेवल का होगा या बहुत फाइनेंशियली इसमें खर्चा आएगा या वो कुछ, मतलब होता है बच्चे सपने वहीं टूटते रह जाते कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस वे में दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूं कि ईजी रहता है या मुश्किल रहता है?
0: जी हाँ, अब अपने परिवार के सबको लगती है, तो मुझे भी लगा था कि जब इसका बताया उन्होंने प्राइस की इतना होएगा, तो मुझे लगा कि शायद मेरे फैमिली के लिए ये ज्यादा हो जाएगा, बट मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जितना होगा हम उतना देंगे, बस तुम निकलवाओ, तुम अपना जो करना चाहते हो वो करो। वो चाहते हैं कि जो शायद वो ना कर पाए वो हम लोग कर सकें, और हर एक माँ बाप की यही वो होती है इच्छा कि शायद जो वो ना कर पाए उनके बच्चे कर सकें।
1: जी दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ पैसों की वैल्यू नहीं, बच्चों के सपनों की वैल्यू, उनकी इच्छा की वैल्यू होती है। तो मेन बात यही पहुंचाना चाह रही थी, खास करके पेरेंट्स तक, कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास समय नहीं है या अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ये फालतू की चीजें हैं और इस पर पैसा खर्च करना बेकार है। तो ऐसा नहीं है, कुछ समय के बाद उन्हीं पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि काश उस समय हमने बच्चों की बात सुन ली होती, समझ ली होती, तो शायद आज वो एक बेहतर जगह पे होते। तो जाते जाते आप हमारे युवाओं को, जो ये आपने बुक लिखी है, एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें, किस तरह से एक प्रेरणादायक जो है लाइफ में बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी मैच्योरिटी है वो 18 साल, जो हमारा 18th बर्थडे होता है तब नहीं आती है, वो तब आ जाती है जब हम समझ आते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमें खुद पर डिपेंडेंट होना मैटर करता है। हमारे लिए हमारी फैमिली सब कुछ होती है, हमारी फैमिली ही हमारे सबसे सपोर्टिव है, वही सब कुछ है हमारे लिए। फैमिली बुरा कहती है तो भी अच्छा के लिए कहती है, और अच्छा कहती है तो भी अच्छे के लिए कहती है। मेरा सबसे जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप जो भी ड्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं, एज को बीच में मत लाइए, एज कोई बैरियर बनता है, एज मैटर नहीं करती आपके ड्रीम्स को चेस करने के लिए। मैं भी एक बहुत छोटी उम्र की हूँ और मैंने ये ड्रीम चेस किया, ये बहुत अच्छी बात है, और जिन जिनको पता चला उन्हें भी बहुत शौक लगा ये जानकर, और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए अपनी एज मत देखिए, बस अपने सपने सजाइए और उन्हें अचीव करिए।
1: जी बिल्कुल। और निम्हि जी एक और बात कि एक तो ये बात कि आपका यहाँ तक पहुँचने में जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है, तो आप रेडियो के माध्यम से किस किस का थैंक यू करना चाहेंगे वो भी बताएं। लेकिन साथ ही एक बात और कि आपकी जो ये बुक है, ये जो किताब है आपकी, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, तो हो सकता है लैंग्वेज बैरियर जो है कुछ बच्चों को आए, वो पढ़ना भी चाहें लेकिन इसमें जो है हिंदी में नहीं है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए एकदम नॉर्मल एकदम लीन इंग्लिश लिखी है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी के टाइम में तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो सभी को आती है, सो वो समझ सकते हैं आसानी से।
1: जी बिल्कुल। तो साथ में ही आपके यहाँ तक पहुँचने में आप किस किस का धन्यवाद करना चाहेंगे?
0: जी मैं अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे लिखने में कभी भी मेरे को मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया कि तुम मत लिखो, तुमसे नहीं होगा, मुझे किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया। मेरे टीचर्स का मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूंगी, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरी मदद की है।
1: जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
1: और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ जो है वो निमृत जी के मम्मा भी इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं, तो मैं उनकी भी एक छोटी सी टॉक आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे का एक सफल होना सिर्फ अकेले का सफल नहीं होता है, माँ बाप का भी उतना ही साथ रहता है, उतना ही सहयोग रहता है, और बहुत जरूरी होता है ये साथ, उनकी भावनाओं को समझ कर उन्हें यहां तक पहुंचाना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने जिक्र किया कि निमृत जी के मम्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, तो उनका एक्सपीरियंस हम कैसे आप सभी तक ना पहुंचाएं, क्योंकि एक बच्चे की मेहनत के पीछे माँ बाप का फुल सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं ऋषिका जी का हमारे इस खास बातचीत में। तो स्वागत है ऋषिका जी आपका। जी तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी आखिर में कि ये जो निमृत जी आपकी बेटी ने इतना मतलब कि गर्वान्वित वाला काम जो है वो किया है, बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी कम उम्र में, अभी 10th क्लास में ये पढ़ रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा मैम, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अभी इसकी एज बिल्कुल छोटी सी है, पर फिर इसने बोला कि मुझे शौक है लिखने का।
1: जी
2: तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू कर जहाँ तक होगा मेरी हेल्प की, जहाँ तक हम लोगों की जरूरत है वहाँ तक मैं आपकी मदद करूंगी।
1: जी
2: फिर मैम जैसे इसने बोला कि मेरे को लिखना है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला करके देख अगर हो जाता है तेरे से तो। फिर मेरा ये था कि मैं, मुझे बहुत शौक था शायरी का।
1: अच्छा आप भी लिखते थे?
2: लिखती थी सब टाइम, स्कूल टाइम से मेरे को बहुत शौक था।
1: जी
2: आज दिन तक मेरे को शौक है शायरी का। फिर मैंने सोचा हम लोग तो आगे नहीं बढ़ पाए किसी वजह से, पर चलो
1: बच्चे
2: करने के लिए बोल रहे तो हम इसको क्यों रोक
1: सपोर्ट करें। बिल्कुल
2: जी, इसलिए मैंने इसको काफी सपोर्ट किया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं।
1: तो आज कैसा लग रहा है आपको?
2: मैम बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी,
2: कि बच्चा इतने आगे तक गया, आज इसकी जिंदगी का ये पहला स्टेप है।
1: पहला स्टेप है बिल्कुल,
2: यहाँ से ही आगे जाएगा बच्चा शुरू से, अगर सीढ़ी का पहला स्टेप है तो धीरे धीरे ऊपर तक। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मतलब ये और भी आगे जाके हम लोगों को काफी प्राउड फील करवाती है ऐसे ना।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए कितनी अच्छी बात है और अनिमृत जी के मम्मा को कितना अच्छा महसूस हो रहा है। कहते हैं जब बच्चे हाई मंजिल तक मतलब एक ऊपर सीढ़ी के माध्यम से ऊपर तक पहुंचते हैं तो सिर्फ उन्हें ही खुशी नहीं होती है, उनके शिक्षकों को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, उनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो ये बहुत एक सुनहरा सा अवसर होता है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आप भी शायरी लिखते हैं, तो बिल्कुल हमारे दोस्तों तक एक शायरी पहुंचाई जाए।
2: ठीक है मैम, मैं तो सारे बच्चों को जो भी इस एज के बच्चे हैं, मैं तो सभी को ऐसे ऐसे मतलब अपनी तरफ से एक शायरी बता देना चाहती हूँ।
1: जी
2: खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, जलता हुआ दीपक रोशनी दे आपको, जलता हुआ दीपक रोशनी दे आपको, हम तो आपको कुछ भी ना दे सके, हम तो आपको कुछ भी ना दे सके, मगर देने वाला हजार खुशियां दे आपको, देने वाला हजार खुशियां दे आपको। मैम जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं
1: जी,
2: और भगवान जो है सहारा भगवान का ही है मैम, बच्चा जब पेट में होता है तब उनको भगवान का ही सहारा होता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मतलब कि बच्चा अगर हम लोग तो माँ बाप तो जन्म ही देने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जैसे इसको मतलब भगवान का आशीर्वाद मिला वैसे सभी बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मिले।
1: बिल्कुल, और साथ ही पेरेंट्स का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है मैम, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर जब पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी बात जो है ये मैम ने कही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी इस बातचीत से जो है अपने बच्चों की जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और बच्चे भी अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम खुद अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझेंगे, हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आज की ये बातचीत आप सभी को पसंद आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी तो दोस्तों, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपनेपन की।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरी हुए रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और एआई सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लक्ष्मण रिम्बोई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत की जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23-37 से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21-42 से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? जल्दी आओ। इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
3: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलूं?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलू?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

0: 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत कने तुहां सारे जुड़ी होने न अपना अपना जेड़ा रेडियो सेट है से ऑन करी ले आने कने श्रोता भी जरूर जिन्हें यहाँ तुहां तक पहुँचते न गल बात करना या अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देना तिन्हें श्रोता भी कॉल करना जड़े से शुरू हो जाते न। श्रोता जो भी इंतजार जड़े से रहता है कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया से इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ते न। एक श्रोता जड़ा न से जुड़ चुके हो न कर दिन तिना कने गल बात से कुथू ते बोला दे न कने तिना का ना क्या है।
1: हेलो
0: नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद मैडम जी, ठीक ठाक है। मैडम जी तुम सुना
0: जी? हम भी ठीक ठाक है जी। तुम कुथू ते बोला दे कने तुम्हारा ना क्या है जी?
1: ईशा बोल रही मैडम जी।
0: जी ईशा जी रक्कड़ ते बोला दे।
1: हां जी
0: जी ईशा जी, बड़े दिन बाद तुम रेडियो गुंजन धर्मशाला जो मुझे लगा था याद किया ना जी। जी क्या काम कर तुम्हें लगे या क्या करा थे आज?
1: क्या लगाना मैडम जी, अच्छे से तो भी बार बड़ी
0: जी। अच्छा तो मुझे ऐसे भी तो हो कुछ काम करा थे तो हम दी आवाज जी ऐसे क्लियर नहीं होती।
1: नहीं मैडम जी, काम नहीं कर रहे थे ना।
0: अच्छा जी, अच्छा
1: जी
0: जी जी। ईशा जी आज का जेड़ा दिन है सिख दिया किचे गया तो हंदा 2 बजे तक।
1: ठीक है मैडम जी, धर्मशाला के हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाना है जी। क्या लगवाए क्या है
0: जी? अच्छा
1: जी
0: जी, और घर सारे ठीक ठाक है ना?
1: ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी तो ईशा जी आज तो हम कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: गीत मैडम जी सुनाएंगे। बगला मुखी माता का कोई भजन
0: जी? अच्छा बगला मुखी माता का भजन सुनना है तो हाँ।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी जरूर जी, तुम्हारी जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा।
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: तो शुरू तो वहाँ भी कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है से इस गीत करने करते ना, तो वहाँ भी जरूर अगर मन करा था सस्पेंस है

है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत तो जरूर पहाड़ी जिड़ा ठुमका है सभी तो हाँ लगाया होना है। वैसे तो दोपहर का ये समय है जिड़ा सुस्ती है से थोड़ी देर छाई होनी है तो हाँ पर जरूर जिड़ा सुस्ती है से यहाँ दूर भगाई देनी है। अपना अपना जिड़ा रेडियो सेट तो हाँ ऑन करा क्योंकि ऑन नहीं कीता तो जल्दी जल्दी ऑन करा कने माटी दी मेह कार्यक्रम दा जिड़ा सफ़र है से तुहां तक लाइव चलिया कने इस सफ़र च तुहां सारे जुड़ी भी सकते। जुड़ने वास्ते जिड़ा नंबर है नंबर जिड़ा स्टूडियो दा है इस नंबर जो जल्दी जल्दी नोट करी लिया नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुँचाई है। बाकी जेड़ा काम में से तुहंद है अजकने दिने दी गल करिए दिनांक जेड़ा अजकना जेड़ा दिन है 23 सितंबर 2026 दी जेड़ा दिनांक है कने दिने दी गल करिए तां बुधवार दा ये दिन तो जरूर अपने जेड़ा कामकार हैं से करा दे उन्हें न क्योंकि कामकार जेड़ा न से हमेशा आंदे चले उन्दे कने कामकार कदी भी जेड़ा है से नहीं रुकते। इसी कने मौसम ऊपर अगर हाँ नज़र दौड़ाइए तो कुथी ना कुथी दोपहर दा समय है तो तुहों जो गर्मी भी लगा दी होनी है जिन्ना ही दिन ढलता है तो कुथी ना कुथी यहाँ जो ठंड महसूस भी होती है मौसम दा भी कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि सितंबर दा ये महीना चलिया है कने उसके बाद जेड़ा बरसात दा मौसम है सभी बिल्कुल ख़त्म हो गया कने ठंड दा जेड़ा मौसम है सर्दियों दा जेड़ा मौसम है से शुरू हो गया तो जरूर मौसम जेड़ा है से बदलाव लेंदा है कने मौसम दे अनुसार अहां चलदे न पर मौसम दे अनुसार अहां अपना ख्याल किस तरीके ने रखते न क्योंकि मौसम दे अनुसार चलना भी जरूरी है अपना जेड़ा ख्याल है से रखना भी जरूरी है पर छोटी छोटी जेड़ा लापरवाहियां न से अहां जो बड़ा जेड़ा नुकसान है से देख री जांदियां न कई बार अहां कोई भी बीमारी है उस जो हल्के च लैंदे न कने सही अहां जो नुकसान देना जेड़ा से शुरू करी हुंदी है कने वैसे भी अजकने दौर दी गल करिए तां बीमारियों का जेड़ा खजाना है से भरिया भरिया क्योंकि कोई भी है कोई भी इंसान है तिश अगर गल करिए बीपी शुगर ये तो नॉर्मल है क्योंकि अहां दा जेड़ा खान पान है ना से बिल्कुल थोड़ा देया बदलुई आ हर घरे दी जेड़ा रसोई है से क्या बोलती है थोड़ा देया स्वादिष्ट खाना जेड़ा है से अहां जो चाहिदा ठीक है स्वादिष्ट होना भी जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हाँ अपनी जीभ दा जेड़ा टेस्ट है उस जो दिखते न पर अपना जेड़ा स्वास्थ्य है उस जो नहीं दिखते तो थोड़ा देर तुह भी सोच विचार करके दिखा अगर अहां दा स्वास्थ्य ठीक है ताई अहां कोई अच्छी जेड़ा चीज़ है अच्छा पकवान जेड़ा इसे खाई सकते अगर अहां दा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो ना तीस अहां अच्छे पकवान जो खाई सकते ना हाँ अपनी सेहत जो फिट एंड फाइन जेड़ा इसे रखी सकते। श्रोता जरूर अहां जो मैसेज दे जरिए भी अपनी है जेड़ा फरमाइशा न से पहुँचा देन तो जरूर जितने भी श्रोता अहां जो मैसेज करा देन तिना दा भी स्वागत है तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र कन्ने जुड़ियो न कने अहां अगे बढ़ते न कने तो हाँ जो फरमाइश दी ओर लेकर चलते न ईशा जी तक अहां ये भजन पहुँचाना है कने तो हाँ सारे भी इंजॉय करना है।

0: दर्शतां तो हजारे सुनिया ए गीत फरमाइश फरमाइश दे वादा हाँ फिरी ते वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात पर। तो हजारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ी सकते कने हाँ करने गलबात चिड़े से जरूर करी सकते। दर्शतों आजकना जेड़ा दौर है हाँ हमेशा आजकने जेड़ा दौर दी गलबात चिड़े से जरूर करते न। अजकने दौर च जेड़ा सबसे बड़ा बदलाव तो जो क्या लगता है श्रोता हाँ कन्नै जुड़ चुके न कर दिन तिना कन्नै गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते
1: सचिन
0: जी
1: नमस्ते जी नमस्ते सचिन जी
0: जी
1: चाल है ना
0: स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न।
1: बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया थोड़ा प्रोग्राम सुना दे बड़ा आनंद आउंदा जी
0: जी धन्यवाद जी। तो हाँ
1: एक गाना एक फरमाइश हो जानी चंबे दी ना
0: जी जी
1: चंबे दा गाना सुनना चंबा वार की नदिया पार
0: जी। तो हाँ कुछ दे रहने वाले न कने अपना
1: मैं चंबे दा रहने वाला जी पर इतना नौकरी कर रहा धर्मशाला को
0: जी। अच्छा धर्मशाला को
1: जी जी जी
0: जी तो तुहा रोजाना ही सुन दे इस कार्यक्रम चो
1: डेली डेली डेली सुना दे
0: जी जी। ता आज यहाँ जेड़ा गल बात करा दे न कि आजकना जेड़ा दौर है तिस तो हो क्या बदलाव जेड़े से नजर आंदा है
1: बदलाव जी जी
0: जी, जी।
1: आज के दौर च बड़ा बदलाव है मतलब जो भी जेड़ा भी अपना समाज है सोसाइटी है ना ये सच परिवर्तन आ चुका है
0: जी जी
1: साड़ा जेड़ा मतलब पुराना जेड़ा साड़ा संस्कृति है ना
0: जी जी
1: जो आज भूली चुके हैं बच्चे ना
0: असि
1: सोचते कि प्रोग्राम दे जेड़ी है बच्चे भी सुन कसी असि भी थोड़ा प्रचार प्रसार करने की साड़े पुराने गाने वगैरा या साड़ी काम कार खेती बाड़ी दा जेड़ा ऐसे ऐसा स्थान जो नहीं भूलना चाहिए
0: जी
1: हां जी जी बचपन जेड़ा साड़ा जी पुराना
0: बचपन ज्यादातर बच्चों की गल करना तिना दा बचपन स्क्रीन तक ही सीमित रही है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बस फेसबुक की दुनिया हो गई है कने बस फोन ही सब कुछ हो गया इना दी जेडी दिनचर्या से खराब हो गई है मतलब पुराने पन्ने दा पुराने दा जेड़ा तरीका तौर तरीके से बदली हुए
0: जी जी। तो तुहें क्या लगदा तुहां क्या बच्चों जो संदेश देना चाहेंगे कि क्या तुहां अपने विचार तिना तक पहुंचा
1: असि बच्चों जो संदेश देना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति ना भूलन ते नशे ते भी दूर रहन करे अपने कल्चर दा अपने बड्डियां दा जेड़ा ना मान सम्मान करन कने अपने मां प्यो दी गल्ला मनन कने अपने पुराने कल्चर जो ना भूलन
0: जी जी।
1: ते ये जेड़े अजकल जेड़ा मॉडर्न जेड़ी कल्चर है संस्कृति है इस यू छड़ी ने अपने पुराने संस्कृति जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी बड़ा भारी बदलाव किया है उन्होंने
0: जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
1: जी जी जी।
0: तो श्रोताओं तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तुहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने गलबात चिड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोता जरूर अपने जेड़ा विचार एन से यहां तक रखे न अजकना जेड़ा दौर है तिस च क्या क्या तुहांजो बदलाव जेड़े से नजर आंदे न। बदलाव तो बड़े सारे न ठीक है अहां अपनी जिंदगी जो बेहतर बनाते बेहतर जेड़े से अहां बड़ा ज़्यादा बनाई लिया यहाँ जागरूक भी बड़े ज़्यादा हुई हो। पहले ये होंदा था कि मोबाइल फ़ोन जेड़े से बिल्कुल नहीं होंदे थे चिट्ठियां दा जेड़ा दौर था पर अगर अहां कोई भी चिट्ठी लिखते थे तो इस अहां दी पूरी जेड़ा अहां चिट्ठी लिखा दे न तो जेड़ा अहां दे एक एक लफ्ज़ जेड़ा न से सुकून भरे होंदे थे या उन्हां सिर्फ मोबाइल फोन अपना मोबाइल फोन लेंदे न कने कुथी ना कुथी अहां चाहे अहां दे रिश्तेदार हैं चाहे से अहां दे यार दोस्त हैं चाहे कोई भी है अहां एक मोबाइल फोन पर ही जेड़े से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल जेड़े से करी लेंदे ठीक है अच्छी गल है अहां दा तिना कन्ने संवाद जेड़े से जरूर हो जांदा है पर कुथी ना कुथी बच्चियां दी गल करिए तां तिना अपना बचपन कुथों तक सीमित जेड़े से करी त्या मोबाइल फोन तक पहले होंदा था कि है थोड़ा दिया भागते भी थे, दौड़ते भी थे, मौज मस्ती भी करते थे, तिना जो बारा दा जेड़ा पता।

ऐसा भी चलता था कि नहीं किस तरीके ने समाज का जेड़ा माहौल है या सोसाइटी का या माहौल ऐसे किस तरीके ने है हर चीज़ का तिना जो पता चलता था। कने अपनी जेड़ा संस्कृति है संस्कृति अहां दे जीवन च कितनी मायने रखती है या अहां दे जेड़ा रीति रिवाज हैं या अहां दे जेड़ा पहाड़ी गीत हैं हर चीज़ अहां दे जीवन च कितनी मायने रखती है हर चीज़ा का जेड़ा पता जरूर बच्चे जो होंदा था पर हुण अहां जेड़ा इसे अपनी जेड़ा जिंदगी मोबाइल फोन तक ही सीमित करी दी हो। दर्शो तो इसी कन्नै अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अग्गै बढ़ाते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न ये गाना अहां पहुँचा देन राधा कश्यप जी तक से रहने वाले न कांगड़े ते तां बड़ा प्यारा गीत है तो तिना इस गीत की फरमाइश अहां तक पहुँचाई है तो जरूर अहां दा फर्ज भी बनता है कि तिना की फरमाइश अहां तिना तक पहुँचान।

0: हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दीन अपनी रेडियो तो शशि कने इसी कने तो हाँ सारे सुनिया एक गीत फरमाइश। अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके न कर दिन तीना करने गल बात। हेलो हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी मैडम जी, तुहां?
0: जी हां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुत्थों दे रहने वाले ने कने तुहां दा नाम क्या है जी?
1: मेरा नाम विजय कुमार है
0: जी। विजय जी धर्मशाला दे रहने वाले ना जी?
1: हां जी मैडम
0: जी। तां विजय जी आजकना जेड़ा दिन ने सिख दिया की चलिया तुहां दा?
1: मैडम बहुत बढ़िया
0: जी, बढ़िया चलिया।
1: हां जी
0: जी जी। ता कदिया लगा था तुहां जो कार्यक्रम?
1: बड़ा अच्छा मैडम
0: जी। ता तुहें क्या बदलाव जेड़े से आजकने दौर च लगदा कि क्या तुहां जेड़े से अपने आसपास दिखते ता कुथी ना कुथी तुहां सोचदे कि जेड़ा बड़ा बदलाव तुहां जो लगदा है?
1: बदलाव ये जी हड़ की होना
0: जी जी
1: जी
0: जी जी। ता विजय जी आज तुहा कुन त्या गीत जेड़े से सुनना पसंद करके?
1: हां मैडम जी, बिल्कुल मैला दी रानी सुननी है
0: जी। मैला दी रानी सुननी है तुहा
1: जी?
0: जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहा तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: ठीक है मैडम
0: जी। तशो तो गल बात हां करा दिन जेड़ा आजकने दौर दी हां गल करिए ता कुछ जेड़ा गल बात है से अहां जो सोचने पर मजबूर जड़े से करी दी है। सबसे बड़ा बदलाव जड़े से मोबाइल फोन है। फायदा भी बड़ा है, नुकसान भी बड़े ना। या स्क्रीन टाइमिंग या रील टाइमिंग या एआई कुछ भी अहां जो पता नहीं चला था तो अहां झटपट जड़े से अपना फोन ले दे कने एआई पर जड़े से सर्च करा दे। ठीक है, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, पर छोटी छोटी जड़ा गल्ला न से सब कुछ अहाँ एआई पर जड़े से ढूंढा देन तिसदे जरिए अहाँ अपनी फैमिली कने जड़ा गल बात है संवाद है से नहीं करी पा दे या तिना जो समय जड़े से नहीं दे पा दे। हर जुबान ते यही सवाल होंदा है कि जड़ा नुकसान है से मोबाइल फोन ही है, क्योंकि अहाँ अपने आस पास भी दिखते न या खुद जो भी यहाँ दिख दे न, पर सही है ना कि हाँ खुद जो कितना की कंट्रोल कर दे न, या कितना की यहाँ जो लगता है कि इस दे फायदे न कितने की नुकसान हैं। हर चीज़ दे फायदे भी होंगे, हर चीज़ दे नुकसान भी जड़े से यहाँ जो दिखने जो मिलते न। तो इसी करने आजकना जड़ा दिन है सभी तो खास तरीके ने बना दे उन्हें न। अगर मेहमान आते न तो पहले अहाँ पूछते थे कि क्या मतलब चाय या ठंडा पानी पीना है। हूँ अहाँ के घर मेहमान आते न तो सबसे पहले क्या सवाल जड़ा है से तिना का रहा है कि वाईफाई है घर च? तो सारे च भी सुन के थोड़ा जहा अजीब लगे होना है कि यह सवाल तो हर कुसी का जड़ा है से जुबान पर रहा, क्योंकि जिन्हें ही अगर नैट खत्म है तो कुछ ना कुछ जड़ा अहाँ की जान भी जड़े से अटकी आती है, या अहाँ खुद जो जड़े से मोबाइल फोन ते दूर जड़े से नहीं रखी पाते न। ज़्यादातर बच्चे जड़ा ना से मोबाइल फोन च अपना समय देंदे न, पर अगर अहाँ थोड़ा देर सोच विचार कर दे न कि 20 मिनट अहाँ अपनी फैमिली वास्ते निकालने न, या उस तरीके ने यहाँ अपना जड़ा टाइम टेबल है से बनाते न, तो कुछ ही ना कुछ यहाँ अपने जड़ा समय है उसका सही सदुपयोग जड़े से ज़रूर करी पाते न। पर से निर्भर यहाँ पर करते हैं कने यहाँ भी अपने समय का जड़ा सदुपयोग है से ज़रूर करना है कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचानी है। मैं पहले भी जिक्र किया था कि कुछ श्रोता है ना जेड़ा व्हाट्सएप मैसेज दे जरिए यहाँ तक अपनी फरमाइशा पहुँचा देन। ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने। तीना दा नाम है अश्विनी कुमार जी। तो तीना तक अहाँ ये गीत पहुँचा देन कने से रहने वाले न करेरी ते। तो तुह सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जेड़ा माँ दा बेटे कन्नै या बेटी दा माँ कन्नै या भाई बहन दा रिश्ता है या कोई भी बाकी अहां दे रिश्ते न, तिन्हां च प्यार भावना जेड़ा है से बिल्कुल खत्म है। माता पिता दी अहां गल करिए तां जेड़ा बच्चे न, बच्चियां जो जेड़ा हमेशा अपना ही अगर अहां बोलन तां हमेशा अपना ही दिखदे न, पर थोड़ा जिहा बच्चों जो भी सोच विचार करने की जरूरत है कि अहां दे जेड़ा माता पिता न से हमेशा अहां दा अच्छा ही सोचते न, क्योंकि माता पिता जेड़ा न से अपने बच्चे वास्ते हमेशा अच्छा ही सोचते न, अच्छी परवरिश तिना तक पहुँचाते न, अच्छे संस्कार तिना तक पहुँचाते न। पर कई बार माता पिता भी कुथी न कुथी गलत जेड़ा है से जरूर हो जाते न, गलत कुथ होंदे समय जेड़ा है से अहां नहीं दे पाते। जल बच्चा अपने माता पिता से समय मंगता है तो पेरेंट्स अपने किसी कम में बिजी होंदे न, जलू बच्चा मोबाइल फोन दिखा दे तो तलू पेरेंट्स उस जो समय देंदे न, तो बच्चे भी कुथी न कुथी चिड़चिड़े जेड़ा न से हो जाते न, या अपना चिड़चिड़ापन जेड़ा है से तिना च शुरू हो जाता है, या से अपनी ही दुनिया जेड़ा है से बनाई लेंदे न, या तिना जो किला रहना पसंद लगता है न, तिना जो कुसी कन्नै गल करना पसंद है, तिना जो सिर्फ मोबाइल फोन च ही रहना पसंद है। तो गलती तो दोनों साइड ते है, समझना जरूरी है हर चीज़ का, क्योंकि अगर अहां कोई भी काम करते न, मेहनत करने ने हर काम अहां हासिल कर पाते न, अगर अहां खेती बाड़ी करते न, अहां जो पता है कि हर खेती जेड़ा है से फसल अहां उगांदे न, कने जेड़ा सीजनल दी जेड़ा सब्जी है से अहां उगांदे न, फसल अहां उगांदे न, उन धाना दा जेड़ा समय है से चलिया है, धान जेड़ा है से अहां बड़ी मेहनत करदे न, ऊर लगांदे न, फिर बाकी जेड़ा काम ऐसे करदे न, फिर उसके बाद हुण धान पक्की आंदे न, तो धीरे धीरे जेड़ा काम मन से चले रहते, तो काम करदे न ताई अहां तिना जो अपनी तिजोरी तक पहुँचाई पाते न, या अपने घरे तक पहुँचाई पाते न। हर चीज़ का कोई ना कोई जेड़ा पहलू है से जरूर होंगे। इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम के सफर जो भी अगे बढ़ाते न, कने तो जो लेख रे चलते न चंबे की ओर, जाने तो सारे भी चंबे जो कि नहीं, जरूर अहां लेख रे चलते न, क्योंकि घूमना फिरना भी जरूरी है।

महाबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते करतो हां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने हां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचांदे न।

0: तो सुरेखा जी तक हाँ भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। इसी कने हाँ फिर ते वापिस अपनी गलबात उपर आई जाते हैं, पर गलबात जड़ा से हम फिर ते हाँ जो रोकना पड़नी है क्योंकि समय जड़ा से बिल्कुल थोड़ा है। तो इसी कने तो हाँ सारे अपनी रेडियो तो शशि जो अनुमति भी दे दिया क्योंकि समय जड़ा से हम अहाँ जो बोला था कि अनुमति जड़ा से ले लिया, तो अनुमति भी लेनी है कने जाते जाते फरमाइश भी तुहां तक पहुंचानी है। ये फरमाइश अहां जो आई वे खन्यारा ते कने तिना दा ना वे चरणदास जी, तो जरूर तिना तक अहां आएगी ते फरमाइश पहुंचा देना।
1: चंबा जिले के भरमौर

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ इसे अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनो, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मार गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक काम करो, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो
9: क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सो वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझको कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा ले करे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी अपनी गप्पा मंच सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा श्रोताओं कैसे हैं तो है सब उम्मीद करनो तो सब ठीक भूणे खरे भूणे और अपने घर हस पुष्ट और तंदुरुस्त भूणे हैं। इंसान बल देने की सारी उम्र किया सो मेहनत करदा कमंदा है ना, अपने अपने स्तर पर मेहनत करदा अपने अपने स्तर पर किया सो कमंदा है। कसकरी मेहनत किया सो बड़े कठिन रेंदे या श्रोतों, और कसकरी मेहनत किया कसकरी शारीरिक मेहनत रेंदे या कठिन रेंदे या तो कसकरी किया सो दिमागारी मेहनत किया सो कठिन रेंदे या, लेकिन मेहनत किया सो करना ही पेंदे या। मेहनत करने के बावजूद किया सो इंसान श्रोतों थोड़ी करी बुलंदी पर किया सो ज़रूर पहुँचता है ना, और लेकिन असली बुलंदी और असली जो मुझे लगता कि मेहनत करी करी इंसान अपना इस जन्मारा जे जो सो सुख तो भोगी लेंदा है, लेकिन जो कर्म तति पर ध्यान न देंदा है। अपने कर्म पर की यशोतों सो विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि इंदी जिंदगी किया सो सरल तरीके होगी ज़रूर व्यतीत भोआ। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो होगी कनेक्ट हो चुके करते हैं, कॉल कर सकते हैं 7081 8 1 7 0 9 1 पर। इस समय गल करिए श्रोताओं तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास किया सो धर्मशाला रहा मौसम बन रहा और 58% किया सो नमी है जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी किया सो है बल दे हैं श्रोतों। तो इस समय मौसम रे जानकारी या श्रोतों जो है तो सुधाकर पहुँचाए हा। तो चलिए श्रोतों कार्यक्रम पर आगाज करते हैं इस गीता सो की और फिर भी तथों बाद तुंदे सभी श्रोतारी तुंदे सभी श्रोतारी की सो है फरमाइश पूरी जरूर कर ले, लेकिन बहरहाल आगाज कार्यक्रम रहा इस गीतों की बहुत सी जानकारी इन जो आसूतूस होगी शेयर करनी इन श्रोताओं तुम्हारा सफ़र के सो सुहाना बनाना, और अगर तो है घरे इनता बेहतरीन नया घंटा के असो तुम्हारा गुजरने वाला है जो कि तुम्हारा अपना कार्यक्रम इस समय किया सो चलो हा श्रोतों तुम्हें अपने रेडियो

0: तेरिया राखा हो, क्या बात है। तो श्रोता हूँ तो सब बन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर सो के 91.2 मेगाहर्ट्ज पर तो कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं जनाब 7018889 पर नंबर अक मुके फ्री तू हो गया है शेयर करींदे ने 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करी करे अपना पसंदीदा गीत की ऐसा हो नहीं सकते ना अपने क्षेत्र जानकारी की ऐसा वो की साझा कर सकते हैं। एक गल विशेष ध्यान रहे श्रोतों की जानकारी की ऐसा रेडियो मंच दसने लाइक जरूर बहुत जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लाइक किया सो जरूर बुआ। तो चलिए जी कुछ एक जानकारियाँ है तुसो की शेयर कर दें और इन दे श्रोतागण के सो उस होगी बिल्कुल वेडी हिन तैयार हिन कॉल करूँ कर दे हिन। तो तुसो सब भी जो भी है ज़रूर जोड़ ले जी कोशिश कर दें तू सब भी जो कनेक्ट करने रही जितने भी श्रोता होगी कनेक्ट होना चाहून दिन 7018889 पर तो है कनेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल है श्रोता हूँ तो सब बन रहे हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला सो की और हूँ सचिन कपूरा। चलिए श्रोता हूँ कार्यक्रम जो होगा बढ़ दें और ये जानकारी होगी कि ऐसा तुसु रूबरू करवाते हैं श्रोता हूँ ये बिल्कुल मौसम तो जुड़ रही है जानकारी है और प्रदेश में की श्रोता हूँ तो दसना चाहता कि मानसून री विदाई रहा काउंट डाउन के असो शुरू बुझी कुछ रहा। पंजाब हरियाणा और राजस्थान रे कुछ हिस्से थो कि असो मानसून री विदाई वे बाद अब हिमाचल प्रदेश वे भी हिमाचल प्रदेश थो भी कि असो मानसून वापस गाना लगो हा और मानसून रा वापस लौटने रा काउंट डाउन के श्रोतों से शुरू बुझी गो हा। प्रदेश में बरखा रहा सक्रिय दौर कमजोर पैने लगो है श्रोतों मौसम परिस्थिति अनुकूल वहने पर सितंबर रे अंतिम सप्ताह में मानसून री विदाई संभव मनु कर दे थी है। लेकिन श्रोतों मौसम विज्ञान केंद्र शिमला वे सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा वे अनुसार अगर है गल करिए श्रोतों तो तीन दसो कि आज तक यानी कि 23 सितंबर तक के असो प्रदेश में मौसम साफ रहना है और 24 लेकर 27 सितंबर रे बीच के असो ऊना बिलासपुर हमीरपुर सिरमौर सोलन शिमला कांगड़ा मंडी और चंबा रे कुछ क्षेत्र में अक्थों दो स्थान पर के असो हल्की बरखा बुझ सकती है श्रोतों। इस मानसून सीजन में प्रदेश में हाले तक के असो सामान्य थो घट बरखा दर्ज हुई है श्रोतों। 1 जून थो 21 सितंबर तक सामान्य थो 708 मिलीमीटर रे मुकाबले 628.6 mm बरखा हुई है श्रोतों जो सामान्य थो 11% घट है। 5 जिला में सामान्य थो अधिक जबकि 7 जिला में सामान्य थो कम बरखा रिकॉर्ड किया सो हुई है श्रोतों। सब थो अधिक कमी किया सो लाहौल स्पीति में 64% और हमीरपुर में 32% रहे है श्रोतों। इसी सो गेंद है श्रोतागण के अनुसो सो गे कनेक्टेड हिन कुछ दिन कौन बलून देन और गड़ी थो बलून देन बाकी श्रोता भी के अनुसो कॉल करू कर देन कोशिश जरूर रहने इस नाचीज री की सभी हूँ कनेक्ट कर सकूँ श्रोतों। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते कौन बलून देन और गड़ी थो बलून देन जी।
1: मैं अपनी बोलूंगी कभी फिर आ रहे थे बोलूंगी।
0: अच्छा जी कौन दिन गीत सुनना तुसु।
1: मेरा खिलो बड़ा उस्ताद।
0: चलिए ठीक है जी जरूर तुसु एक गीत सुन ले है। चलिए श्रोता इस सो और भी अन्य हिंद है श्रोता के सो कॉल करो कर दे हिन जरूर सभी कनेक्ट कर दे हिन श्रोता इन दे अगले श्रोता हाँ जी हाँ रूप रूप बंदे तो तुस होगी भी है कनेक्ट करवादेन। बहरहाल तो सब भी अस होगी कनेक्ट बुझ सकते नंबर में साझा करें कमेंट रे माध्यम तो सुनील कुमार जी अस होगी जुड़ रहे हिन और बलून दिन सचिन भाई नमस्ते। मेरी पसंद रा गीत के सो हुनाई दिया बामणुआ गाना जनाब ज़रूर इस गीता जो होने लगे तो सुबह है, लेकिन बहरहाल चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं इन श्रोतों और इस जो गीता की फरमाइश आया इति जो पूरा कर दें, बने रहे जुड़े रहे तो ऐसा बार जैसे सचिन का पूर्सों की गूंज अपने पन रही और सभी प्यारे प्यारे श्रोता की गूंज फिलहाल इन अगले श्रोता कनेक्ट बुझे। हाँ जी नमस्कार जी, वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है।
2: नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है?
0: बहुत बढ़िया जी, कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन?
2: मैं ओंकार चंद बोल रहा जी।
0: ओंकार चंद जी कड़ी हूँ बोलूं देन, क्या जगह रहा ना कड़ी तो हरन देन?
2: सिर्फ बाड़ी तो बोल रहा जी।
0: अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक ने जी?
2: हाँ जी ठीक ठाक जी, तो हाँ ठीक ठाक
0: है
2: ना?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ओंकार चंद जी क्या फरमाइश लेकर आए इन तो है आज?
2: मैं ऐसे ही पिछला हफ्ते दस गाना चल उड़ जा रहे पंछी से गाना सुनना है।
0: चल उड़ जा रहे पंछी हिंदी गीत है ना जी ये?
2: इसे गाना सुनना है
0: महाराज, तो हाँ गद्याली गीत दसा, तो हाँ पहाड़ी गीत दसा है ना जी?
2: हाँ जी।
0: चल उड़ जा रहे पंछी ये हिंदी गीत है ना जी?
2: हाँ जी हाँ जी।
0: हाँ जी, तो हाँ पहाड़ी गीत दसा से अहाँ तो जो ब्रॉडकास्ट कराई सकते न हिंदी गीत कराई सकते न, माफ कर गद्याली गीत कराई सकते न है ना जी?
2: जुलाई जो है चल पर भी लेना वो।
0: हाँ जी
2: हाँ
0: कुंडे जी, तो हाँ बिल्कुल क्लियर दसा सांजो ना, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं हो दी ना, शब्द क्लियर सुनाई दे दी।
2: मेरे ने बिछोड़े है हाथ पे हाथ वो मेरे सजना से
0: तेरा मेरा लगन तस गीतर है वर्डिंग का।
2: हाँ तेरा मेरा लगन
0: मेरे ने बिछोड़े के चलिया जनाब, दुनिया बड़ी दुविधा अंदर बंदे हम समझे सकता।
2: हाँ मैं भूल गया ना, चल बात
0: कोई नहीं जनाब, धन्यवाद धन्यवाद जरूर होना।
2: ठीक है जी, ठीक है
0: जी। इन दे अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हिन पुस्तन कुंड बोलूं दे। नमस्ते जी
3: और साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल चाल न?
3: बढ़िया पे वल्ला।
0: बढ़िया जी बढ़िया, कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन?
3: किशन चंद बोल बैठ।
0: किशन चंद जी खिड़कों बोलूं देन है ना जी?
3: हाँ जी हाँ जी।
0: और ठीक ठाक राजीव बाजी?
3: बढ़िया बढ़िया।
0: किशन चंद जी तो कुछ खिड़कों रे नोई ताजी या कुछ कुछ बढ़िया दे गल की सो सुनाई दे अपने श्रोता जो जो आज
3: बढ़िया जी बढ़िया खिड़कों रहे हैं कि प्रसाद बढ़िया हो यार कॉफी से अल्लाह हम ताम बढ़िया जी।
0: हाँ जी
3: मतलब बरसात ठीक रहे या हो पिछले साल तो बड़ा नुकसान हुआ बड़ी।
0: अच्छा
3: हाँ जी,
0: इस साल ठीक रही है बरसात?
3: हाँ बरसात बढ़िया रही, मौसम खुली हुआ है।
0: अच्छा
3: हाँ जी,
0: तो बड़ी अच्छी गल है ना जी, कोई जान मान रहा नुकसान ना बुआ है ना।
3: हाँ जी बाकी ठीक है सब कुछ, थोड़ा ही रहा रोड जो प्रॉब्लम है, रोड बड़ा खराब है ना।
0: अच्छा
3: ਅਜੇ ਵੀ ਆਕੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਜੀ ਟਲੀ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਂ ਪਈ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਹੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਸੱਤੀ ਹੋ ਲੱਗੀ।
0: ਓਹੋ
3: ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਮਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ
0: ਤਾਂ ਤੁੰਦੇ ਨਰਵਾਣਾ ਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰੀਤਾ ਦੇਵੀ ਆ।
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਤੋ ਹੈ ਤਿੰਨਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਜੋ ਰਹੀ ਜੀ?
3: ਹਾਂ ਪਜੋ ਰਹੀ ਜੀ।
0: एरा अबे तो ये गल वेडियो मंच पे हजारों मणु हुणो कर देन, फेसबुक रे माध्यम तो भी रु कर देन, ता अक मके है बे दसिंदे सविता देवी जी तुंदी पंचायत मके सो इस प्रकार री जानकारी सु तक पुजे आ कि रोड के सो काफी टाइम थों खराब आ, ता अगर हुणो कर देन तो है या तुंदे जानने वाले कोई विन ता सो जरूर इने तक ये जानकारी पुजाई दिन है ना
3: बल्लो ना दे जी। इंजे मतलब मौसम खराब है तो पीछे थोड़ी मिट्टी मुट्टी आंदी दूजी अपनी ना गिट्टे वाली।
0: हाँ जी
3: रोडी रोड लाई ने थले सड़क आ ना मार को कुछ नहीं आए ना।
0: अच्छा
3: चलो बरसाती थे ना मैं रोग लोग लग ना कौन सा तकड़ी पहनी थी अपने ले चलो मारी मुट्टी नंटी ना से।
0: चलिए ठीक है जी, अकमुके फेरी तो है कि ऐसो बल्ले करे है रहे और दुनिया भी दस इन क्या है वेड़ी गुंजन में भी कि ऐसो जानकारी पजाई तो रही और न जाने कितने लाख हजार मणु है कि ऐसो होने लिए तो जल्द तो जल्द कि ऐसो काम जरूर अब होना चाहिए नहीं तो अगली बारी फिर अगर तो कॉल करी थी तो सरिता देवी जी जो कि प्रधान हिन नरवाना रहे और काफी अच्छे प्रधान रे चुकरेन फेरी जीतुरेन है ना जी।
4: हाँ जी हाँ जी।
0: होप सो कि तो है कम करीन सरिता जी अगर तो हुनु कर देन या तुंदे कोई बिचाने आले और हुनु कर देन राकेश जी।
3: गशूरी ये प्रधान नहीं ऐसी गल नहीं
0: है। अच्छा
3: गशूरी ये प्रधान में क्या पता ना पानी में डाल के करूंगा।
0: चलिए थोड़ा करी समय और दे या तीनों तो है और फिर तत्थों बाद कराक मौके फिर गिची करेगी क्या पता काम पूछेगा। अच्छा
3: मुझे तो बढ़िया
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। कुंडने गीत होना पसंद कर ले क्या बात है। चलिए जरूर हुन ले तो सुई गीत है ना जी।
3: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी। श्रोताओं चलिए कार्यक्रम में दी अपनी गप्पा जो तो है सब हूँ कर दिन और इंदु बाला जी भी कमेंट करू कर दे हिन डेरे हाकमा दे आए सुना दो सचिन जी। अश्वनी सुकेतिया जी राम राम सचिन जी राम राम जी अश्वनी।

सुकेतिया जी, जय श्री राम। ठीक ठाक ने तो है सब, बढ़िया भुने इन ज़रूर जी है फरमाइश रद और के सो है ज़रूर पूरा कर ले। और इंदु जी इंदे बड़े रेगुलर श्रोता हिन, हर कार्यक्रम जो किया सो हुन दे हिन। और ऐसे श्रोता बहुत बहुत बोलना चाहता कि काम बंदे जो हर एक कार्यक्रम जो किया सो हुन दे हिन, है ना। और बड़ी रुचि की सो हर कार्यक्रम में रख दे हिन। तो चलिए श्रोतों सभी फरमाइश है ज़रूर पूरी कर ले, कोशिश ज़रूर रहने हैं। तो सब बन रहे ने समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सो के। और अब फरमाइश दौर के सो पूरा ऐह करना लगे बंदे।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी अगपा की ऐसो तो है सब हूँ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आगमों के फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। चलिए बहुत प्यारे दे गीत तो है सभी हूणो श्रोतो तेरा मेरा लगन हो सजना कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और लेके चलते दूसू अगली जानकारी रे किनारे जिला कांगड़ा पालमपुर रे श्रोतों एक अधिकारी जो कि रिटायर हैं ऑनलाइन निवेश व नाम पर किया 1.3 करोड़ रुपये थो अधिक रे साइबर ठगी वे मामले में किया सो साइबर थाने जो पहली बड़ी सफलता किया सो मुड़े है श्रोतों साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला भी टीम थो किया सो संबंधित बैंक सोगे श्रोतों 13 लाख रुपये भी रकम की सो होल्ड करवाई देते हैं। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरे भूने थों बाद देवासी पीड़ित पूर्व जो कि रिटायर हिन सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि असो वापस मुड़ेगी है श्रोतों तटीय ठगी वे रकम जिन अन्य बैंक खाते थों भेजे गए थे त्यारी जानकारी जुटाई करी रकम जो होल्ड करवाने री कार्रवाई भी किया सो तेजी होगी कि ऐसा चल रही है श्रोतों सोगी श्रोतों साइबर पुलिस से की ऐसो टीम साइबर शातिर आरोपी भी खोजबीन अभियान भी की ऐसो शुरू करी दिता है। और मिली जानकारी के अनुसार पालमपुर क्षेत्र रह सेवानिवृत्त अधिकारी थो साइबर ठगियां ऑनलाइन निवेश में मोटे मुनाफे व झांसा देकर 1,23,25,000 रुपये भी ठगी की ऐसो भोया पीड़ित है। करीब डेढ़ महीने वे दौरान 70 अलग अलग लेन देन रे माध्यम थो ये रकम विभिन्न बैंक खाते में की ऐसो जमा करवाई थी श्रोतों अक्की दिन में सर्वाधिक 11 लाख रुपये तक रा लेन देन की ऐसो हुआ तो श्रोतों ठगे किया सो फेसबुक रे माध्यम थो कथित निवेश मंच थो जुड़ने वे बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर संपर्क बढ़ाओ श्रोतों मामले में साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में केस दर्ज हुआ श्रोतों जांच रे दौरान पुलिस से किया सो जिन्या खाते में रकम ट्रांसफर बछोरे थे त्यारी जानकारी संबंधित बैंक थों के असो साझा कर रकम जो के असो आगो ट्रांसफर भूने थों के असो रोकने री प्रक्रिया के असो शुरू करी थे इतना इन्या अपनी साइड थों के असो

माफ करे जी, रिटायर तो है बुझी गुछूर एन गवर्नमेंट जॉब थो तो है रिटायर हिन। मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा तो है बुद्धिजीवी भूने हिन, है ना। हाँ पूरे आंकड़ा होता सुनो, 1,23,25,000 रुपया। मतलब कोई अगर ना युवा इस कम जो करा था बुझींदा भी आके चलो यूथ तो युवा थो है ना, माँ पैसे रहना पता बुना माँ बड़े कि सो जोड़ रहे बुने और ते सो उड़ाओ करता बुना तो इतने पे है कि सो उड़ाई दिता। लेकिन आके जहने गवर्नमेंट इम्प्लॉय रिटायर इम्प्लॉय इस प्रकार होगी करा, यानी कि तुसुले इतनी संपत्ति तो पहले या है ना करोड़ों रुपया तुसुले पहले या फिर तस्वीर तो डबल करने वे चक्कर में पे होंगे वो भी। और सो भी कि ये ठगी ये मतलब हर जगह साइबर क्राइम की सो हमेशा यह भी आप समय समय पर कि सो अपडेट कर दे वेन देन जाए तो है फोन ना मंज न्यूज़ ए रिले जाए तो है टीवी में ए विलिया जाए जड़ी भी वीडियो मंच होने लिया समय समय पर कि सो साइबर जो आरोपी बंदे तैयार बारे आए तो सो दस दे वेन देन और जानकारी की सो प्रदान कर दे वेन देन। लेकिन तत्वों बावजूद भी किया सो तो है अगर ऑनलाइन मतलब पह डबल कराने वे चक्कर में पी रहे हैं तो ऑनलाइन गेमिंग रे चक्कर में पी रहे या पह डबल कराने वे चक्कर में पी रहे थे इस प्रकार रे ठगे किया। सो हमेशा बुंदे भी आए और हगू भी बुने है ना, क्योंकि सरकारी नौकरी था इन ना जो इन सो सिफारस होगी या जी हम भी तथी पर है कुछ बल्ले ना सकते लगू कर दिन है ना। लेकिन जहने भी आ ये गल्ला जो बिल्कुल तो समझ लिया कि आरोप किया सो आरोप ना साइबर आरोपी के न सोता बड़ो कर दिन क्राइम बड़ो ही करता है। लेकिन ये सूझबूझ वाली गल है कि पैसे डबल करिए बिना बंदा जो तुम्हें मेहनत रे कमाए सो ही की सो बंदे तत्ती अंदर ये भगवान की माता रानी की सो बरकता पा तो खरी गल है ना, और बरकता भूना चाहते आ नहीं तो ये डबल डुबल रे चक्कर में मत पिया और इस प्रकार हो कि करोड़ों लख रुपया हगों भी तुसू गुवाना है। बहरहाल कार्यक्रम जो हगूँ लेकर चलते न और आंदा तो जाना रांझू डंगिया बोंदा इन्हों लोगों के जली जाते सीने माए। चलिए गीत के सो है तुसु तक पहुँचाई देंदे हिन शो तो और ये इंजॉय करे इस प्यारे दे गीता जो।

चलिए बिल्कुल, दुध तो बुंदा था ढक के रख दे हैं, ये जोबन जोबन मतलब ये जवानी किया ये ना ढकियो कर दी। जवानी की ऐशो तो सो बड़ी कम्मा मंज लग अच्छा था, बुढ़ापा के सो बेहतरीन बुचिगंदा है, अच्छा बुचिगंदा है। बहरहाल तो सब ये ट्यून कर रहे इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला। और चलिए चलते हैं ना, और इंदे रेगुलर जो लिसनर हैं तैयारी फरमाइश में दिन या कमेंट रहे जरिए के सो फरमाइश भेजे थे, ता फरमाइश जो भी कर दें पूरी बने रहे। तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज अजय तभी प्यारे प्यारे श्रोता के सो असोगे बन रहे असोगे जुड़ रहे। और इस कार्यक्रम जो हूँ कर दें अक मैडी नेगी फरमाइश करूँ दे कुणकी जैरी भरमोरी यारे सिर गाने री धन मेरे या भोलिया गाना है ना। भाई कोई और गीत की सो जरूर दस दिया। फिलहाल कार्यक्रम इस जो तो है गीत बल्लू ए है पूरी कोशिश कर लेगी तुसु तक जरूर पूजा। बहरहाल अगले अगले श्रोता जो है किया सो कनेक्ट करते हैं। गीता सो की अपने सभी श्रोता जो कनेक्ट करते हैं।

अपनी गप अगेन सो चल रही बहरहाल अब इजाजत दी दी है श्रोतों को जो कि वक्त उजगो तो सुथों अलविदा लेने रहा मूल दिन फिर 6 बजे गुड इवनिंग धर्मशाला सोगी और हम सचिन कपूर फिर अल तो सुथों ले लेने हो इजाजत हो गंदे गंदे बसे बलना चाहो श्रोतों माँ बाप री सेवा जरूर करा जरूर करा और खासकर मोर ही सेवा की ऐसा हमेशा कर दे रही हो करा श्रोतों चाहे सो गुस्सा करा गिला करा लेकिन ता होगी कि ऐसा जरूर प्यार करा श्रोतों है ना जो कि एक माँ ही ऐसा दुनिया में सक्षा जो तुसो बिना तुंदे मतलब रह गया सो तुसो दिलाहो की प्यार कर दिया और दिलाहो की चांद दिया तुंदी कमाई था तुंदे मतलब किसी भी चीज़ था ता हो कि ऐसा कोई कोई लेना देना नहीं है ताहो सिर्फ है कि सेरा परिवार और एक ही सो मतलब खुश रहा से परिवार खुश रहा सिर्फ जिंदगी में किया सो सफलता इन ये जिंदगी में आगू बढ़ा नियंत्रण किया सो कोशिश करा और आगू बढ़ा है ना पेरेंट हर किसी रे किया सो ये चाहता है इन छोतों ता जरूर अपने पेरेंट्स होके किया सो लगाव जरूर बनाए करे रखा और प्यार जरूर बनाए करे रखा है ना बहुत सारे केसेस हैं बहुत सारी जगहें हैं बहुत सारे ऐसे इंदी हकरी तुंदी हकरी सामने भी ऐसे केसेस बंदे जड़ी माँ बाप के सो बेचारे केले रह गंदे हैं है ना और नुक पुत्र के सो लग बुझ गंदे हैं छोतम बहुत सारी जगहें ऐसा बंदा है हर घर में लड़ाई झगड़ा एक आम गलग जस घर में लड़ाई झगड़ा ना बुआ छोतम तड़ी प्यार भी ना बंदा था कभी कभी महीने साल महीने बाद के सो लड़ाई झगड़ा भी बुझ गंदा है ना लेकिन प्यार मोहब्बत किया सो रिश्ते में बरकरार रहना चाहिए जो अक्की छत थले रेव करते हैं त्यारी मोहब्बत और त्यारे आपू में प्यार लगाव सो दिला थो बुना चिंता है और सो हमेशा जिंदा रहना चिंता है शो तो इन शब्द था सचिन कपूर ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ जैसे अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनो, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सकें। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश और तंदुरुस्त होंगे। श्रोताओं, चलिए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं धर्मशाला का इस समय का मौसम क्या है। श्रोताओं, तो जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं कि आज 23 सितंबर है श्रोताओं, और धर्मशाला में अधिकतम तापमान जो है वो 23.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रहा श्रोताओं, और न्यूनतम तापमान की बात करूँ तो न्यूनतम तापमान जो है वो 16.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है रात के वक्त में श्रोताओं, ये अनुमान लगाया जा रहा है श्रोताओं। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में आज जो मौसम है श्रोताओं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, धूप पूरा दिन जो है वो खिली रही श्रोताओं। और मैं नमी की बात करूं श्रोताओं तो नमी इस समय लगभग 62% है। आसमान मुख्य रूप से साफ है श्रोताओं, हालांकि कुछ हिस्सों में कहीं ना कहीं बादल जो हैं वो छाए हैं और छाए रहने की कल भी जो है वो आशंका है, और कल हो सकता है हल्की बुछारें कहीं जाकर जो है वो हो सकती है श्रोताओं, है ना जी। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:15 पर जो है वो सूर्य अस्त का समय रहेगा। अब दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और आगाज़ करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम का। आप सभी के रेडियो सेट पर यह रहा कार्यक्रम का आगाज़ का पहला गीत।

14 FM एंड 91.2 MHz पर ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम जाहिर सी बात है हमारे साथ आप सुन रहे हैं श्रोताओं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए तो लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को आज के विचार की ओर। कहते हैं ना जीवन जो है वो बहुत सुंदर है और इसे हर पल सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। श्रोताओं, हमारे विचार ही हमारे शब्दों आदतों और हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अपने आसपास के जीवन में प्रेम और मुस्कान बांटने का प्रयास जो है वो ज़रूर करें श्रोताओं, है ना। जैसी आपकी सोच होगी श्रोताओं वैसे ही आपके शब्द होंगे और वैसे ही आप अपने कर्मों को बनाएंगे। अच्छाई को बहते पानी की तरह निरंतर और शुद्ध रखें श्रोताओं। तो ये आज का विचार था, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बिल्कुल बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम हमारे साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का नाम है। आइए कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं श्रोताओं और इस गीत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। मौसम की जानकारी के साथ करवा ही देते हैं, फुली तरीके से आपको रूबरू करता हूँ। पंजाब हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई के बाद श्रोताओं अब हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के लौटने का काउंट डाउन जो है श्रोताओं वो शुरू हो गया है। प्रदेश में बारिश का सक्रिय दौर कमजोर पड़ने लगा है। मौसम परिस्थितियाँ अनुकूल रहने पर सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून की विदाई संभव मानी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के संदीप कुमार शर्मा के अनुसार 23 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 24 से 27 सितंबर के बीच ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा, मंडी और चंबा के कुछ क्षेत्रों में एक से दो स्थान पर जो है श्रोताओं वो हल्की बारिश हो सकती है। इस मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक जो है वो सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है श्रोताओं। पहली जून से जो है 21 सितंबर तक सामान्य 708 मिलीमीटर के मुकाबले 628.6 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 11% कम है। 5 ज़िलों में सामान्य से अधिक जबकि 7 ज़िलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है श्रोताओं। सबसे अधिक कमी लाहौल स्पीति में 64% और हमीरपुर में 32% रही है श्रोताओं। बताना चाहते हैं मानसून की विदाई की तारीख वर्ष दर वर्ष जो है वो बदलती रही है श्रोताओं। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में 30 सितंबर रही थी मानसून की वापसी श्रोताओं, है ना, जो मानसून की विदाई है। मैं अब तक साझा कर रहा हूं कि किस वर्ष में किस तारीख को जो है वो मानसून की फुली विदाई जो है वो हो चुकी थी। तो 2017 में 30 सितंबर को हुई थी विदाई, 2018 में 1 अक्टूबर, 2019 में 11 अक्टूबर, 2020 में 30 सितंबर, 2021 में 11 अक्टूबर, 2022 में 3 अक्टूबर, 2023 में 6 अक्टूबर और 2024 में 2 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। 2025 में 26 सितंबर को मानसून की विदाई हुई, जबकि 2026 में अभी विदाई का इंतज़ार है श्रोताओं। मानसून का आगमन 30 जून को हुआ था श्रोताओं। अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का रुख और विभाग की घोषणा तय करेगी कि हिमाचल से मानसून कब पूरी तरह से विदा होता नज़र आ रहा है। चलिए कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ है, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये वेली गुंजन है और मैं हूँ सचिन कपूर। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल लाइव। हाई है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीकी के जरिए और अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। श्रोताओं, प्रदेश भर के उचित मूल्य की दुकानों यानी राशन डिपुओं में पुरानी ई

पीडीएस और पीओएस मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जा रही हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पहले चरण में 5,430 नई पीडीएस और ओपीएस मशीनें सभी ज़िलों को जो है वो वितरित कर दी हैं श्रोताओं। इन मशीनों में L1 फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ 4G नेटवर्क की सुविधा होगी श्रोताओं। मशीनें जियो और एयरटेल की 4G सिम के माध्यम से संचालित की जाएंगी। इसी तरह से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम को इस समय होस्ट कर रहा हूँ और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए, वैसे ये जानकारी आपके साथ एक बार फिर से मैं साझा करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि साइबर ठगी के चक्कर में जो है वो आप सभी ना पड़े, तभी बेहतर होगा आपके लिए भी और परिवार के लिए भी। जी बिल्कुल श्रोतों, ज़िला कांगड़ा पालमपुर के सेवानिवृत्त अधिकारी से ऑनलाइन निवेश के नाम पर हुई 1.23 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना को पहली बड़ी सफलता मिली है। श्रोतों, साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला की टीम ने संबंधित बैंक के साथ जो है वो बातचीत करके श्रोतों 13 लाख रुपए की रकम होल्ड करवा दी है। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये राशि पीड़ित पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी को वापस मिल सकेगी। वहीं ठगी की रकम जिन अन्य बैंक खातों में भेजी गई है श्रोतों, उनकी जानकारी जुटाकर रकम को होल्ड करवाने की कार्रवाई भी तेजी से जो है वो शुरू कर दी गई है श्रोतों। साथ ही बताना चाहूँगा श्रोतों, साइबर पुलिस की टीम साइबर शातिर आरोपियों की खोजबीन अभियान में भी युद्ध स्तर पर जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पालमपुर क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारी से साइबर ठगों ने ऑनलाइन निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर 1,23,25,000 रुपए की ठगी की थी श्रोतों। पीड़ित की करीब 1.5 महीने के दौरान 70 अलग अलग लेन देन के माध्यम से ये रकम विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाई थी श्रोतों। एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख रुपए तक का लेन देन किया गया था श्रोतों। ठगों ने फेसबुक के माध्यम से कथित निवेश मंच से जोड़ने के बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर संपर्क बढ़ाया था श्रोतों। मामले में साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में केस दर्ज किया गया श्रोतों। जांच के दौरान पुलिस ने जिन खातों में रकम ट्रांसफ़र की थी उनकी जानकारी संबंधित बैंकों से साझा कर रकम को आगे ट्रांसफ़र होने से रोकने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोतों, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेडियो गुंजन गूंज के साथ, यानी कि हमारे साथ। आइए।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो चौकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से गीत संगीत तो यूं ही चलता रहेगा, श्रोताओं गीत संगीत का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, और जो मैंने जानकारी आप तक पहुंचाई है श्रोताओं, होप्स हो कि आप सभी साइबर ठगी से जो है वो बिल्कुल दूर रहेंगे और इस प्रकार की ठगी मतलब साइबर क्राइम से जो है वो आप बिल्कुल सचेत भी रहेंगे, है ना। इस इन बातों का जो है वो खास ध्यान भी रखेंगे कि इस प्रकार से जो है वो साइबर ठगी होती रहती है, इसलिए किसी भी ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति है चाहे उसके झांसे में ना आए, चाहे वो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम दे रहा है, टेलीग्राम दे रहा है, कुछ भी इसके चक्कर में ना पड़िए। जो कमाई है उसी में संतुष्ट रहिए, जो कमाई है उसी में जो है वो जीना सीखिए श्रोताओं, और हो सकता है तो अपनी कमाइयों को, अपनी कमाई को जो है वो अलग स्तर पर बढ़ावा दें, अलग स्तर पर जो है वो बढ़ाएँ, है ना। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर, और ये जानकारी थोड़ा सा आप सभी को बिल्कुल खंगोल के रख देगी, क्योंकि खोली, कांगड़ा के खोली की मैं बात कर रहा हूँ जो डांडा के पास है श्रोताओं, वहाँ की ये जानकारी है। और ऐसा मामला हमने हमेशा जो है वो यूपी या बिहार या दिल्ली इस प्रकार या इस तरह के स्टेट में जो है इस प्रकार के इस तरह के राज्य में जो है वो सुना था, लेकिन हमारे ही अपने कांगड़ा में इस प्रकार का मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आएगा, ये कभी सोचा नहीं होगा किसी ने भी। ग्राम पंचायत खोली के वार्ड 7 में जो है वो मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है श्रोताओं। यहाँ एक नवजात शिशु को जन्म के बाद कथित तौर पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। नवजात के रोने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि लोगों के पहुंचने तक नवजात जीवित था। ग्राम पंचायत खोली के प्रधान कुलवंत चौधरी ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर सूचना मिली, जिसके बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर नवजात को देखकर उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस थाना कांगड़ा को दी। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लेकर आवश्यक चिकित्सक मतलब आवश्यक ट्रीटमेंट जो है श्रोताओं चिकित्सकीय सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई। पुलिस ने नवजात को उपचार एवं स्वास्थ्य जांच के लिए टांडा अस्पताल भेजा। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार 10 बजे के करीब नवजात शिशु ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस छानबीन कर रही है। टांडा अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत। अब न जाने

अभी पुलिस छानबीन तो ज़रूर कर रही है शो, तो जैसे ही कुछ सामने आता है तो ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच लेकर आज भी हम जी रहे हैं, आज भी हम जी रहे हैं, तो वाकई में ही हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इस पर तो हम कोई कमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। वाकई में ये बहुत पिछड़ा हुआ ये बहुत पिछड़ी हुई सोच है कि इस प्रकार से आप कर रहे हैं। बहरहाल आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं श्रोताओं, और रूबरू करवाते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत के साथ।

0: Click on the bell icon.
1: श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि उनकी पैरवी के परिणाम स्वरूप आकांक्षी जिला चंबा के दुर्गम एवं जनजाति क्षेत्र को जोड़ने वाले चंबा किलाड़ मार्ग को वास्तव महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा मिला है। ये निर्णय चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री महाजन ने बताया कि भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय ने 13 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना की सूची घोषित की है। इस आदेश के अनुसार परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव की व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन श्रोतों रोडहेड फंड के माध्यम से की जाएगी। श्रोतों, BRO की भूमिका भी संबंधित परियोजनाओं की क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रहेगी। श्रोताओं, रक्षा मंत्रालय के आदेश से देशभर की 11 सड़कें परियोजनाओं को सूचीवृत किया गया है। इनमें 7 परियोजनाओं को प्राथमिकता 1 तथा 4 परियोजनाओं को प्राथमिकता 2 में रखा है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित चंबा किलाड़ और लामखग्गा दर्ग हरसिल और इस तरह के जो सड़क परियोजनाएं प्राथमिकता 2 की सूची में शामिल हैं। श्रोतों, हर्ष महाजन ने बताया कि चंबा किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लाइन मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रावधान किया है। रक्षा मंत्रालय के ज्ञापन में इस परियोजना के संबंध में नई सड़क के निर्माण पर विचार करने और किलाड़ तथा निर्माणधीन सड़क के साथ प्रस्तावित मार्ग का संरक्षण निर्धारित करने का उल्लेख है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। श्रोतों आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और बिल्कुल आप सभी यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन किसी गूंज के साथ। और प्रकृति का ख्याल जो है वो हम हमेशा कहते हैं श्रोतों, ज़रूर रखें, हम हमेशा अपने लाइफ में ज़रूर कहते हैं कि प्रकृति का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें और ज़रूर प्रकृति का ध्यान रखें श्रोतों, वहीं से ही जीवन जो है वो हम सभी का चलता है। बहरहाल अब आप सुनेंगे समाचार रेडी गुंजन धर्मशाला में।
1: स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
2: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों की प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन IOC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का IOC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंतियास को हराया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 49 किलो में रजत पदक जीता। जैमिना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 105 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी

0: से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ इसे अस्पताल ले जाओ भाई,
2: संभाल के। हाँ इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नाचीज आरजे सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतोगण का। आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। चंबा प्रवास से लौटते हुए शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज सिविल हॉस्पिटल शाहपुर के निर्माणाधीन नए भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाकर भवन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्द शुरू कर क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है शतों, और 4 मंजिला अस्पताल भवन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। इसके उपरांत पठानिया ने निर्माणधीन पशु फोलिक्लिनिक भवन का भी निरीक्षण किया तथा कार्य की प्रगति की जानकारी जो है वो ली शतों। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यह ही चलता रहेगा श्रोतों। आइए अगली जानकारी के साथ अब आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। विद्युत लाइन ट्रांसफार्म स्थापित करने व विद्युत लाइनों के सामान्य रख रखाव कार्य के चलते 25 सितंबर को बड़ोल, लोहर बड़ोल, अपर बड़ोल तथा अन्य साथ लगते क्षेत्र में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य पूर्ण होने तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर ये कार्य अगले दिन किया जाएगा श्रोतों। इन जानकारियों के साथ आप रूबरू हो रहे हैं और बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा श्रोतों जिस तरह से खुल रहा है। लेकिन आइए इस गीत के साथ आपको रूबरू करवाते हैं, बने रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ।

बिल्कुल शतवाज, कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, और वाकई में ही कहना तो ज़रूरी हो ही जाता है श्रोताओं जब प्यार होता है तो। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओं, गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत सी जानकारियों के साथ आप लोग रूबरू हुए भी हैं और होते भी जा रहे हैं श्रोतों। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने और 24 घंटे संचालन की सुविधा देने के लिए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत दी है श्रोतों। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट 1969 के तहत राज्य के सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 9 और 10 के 10 तथा नियम 11 के प्रावधानों से छूट देने की अधिसूचना जारी की है श्रोतों। ये आदेश जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है श्रोतों। सरकार ने ये छूट ईज ऑफ बिजनेस और 24 घंटे कारोबार संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी है। हालांकि प्रतिष्ठानों को छूट मिलने के बावजूद कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रावधान लागू रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों से अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक काम नहीं करवाया जा सकेगा और उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य रहेगा। श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये छूट राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी श्रोतों। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों के साथ साथ तो आप रूबरू हो ही रहे हैं, लेकिन आइए गीत संगीत का पिटारा भी खोलते हैं श्रोताओं।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है। गीत संगीतों का ये सफ़र और जानकारियों का ये सफ़र शोतो यूं ही चलता रहेगा और आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। ट्रैफिक नियमों को जो है वो ज़रूर फॉलो करें शोतो, दो पहिया वाहन जो है वो ज़रूर धीमी गति से चलाएँ, चार पहिया वाहन जो है वो भी धीमी गति से चलाएँ, चलाते समय जो है वो सीट बेल्ट, चार पहिया वाहन अगर आप चला रहे हैं तो चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जो है वो ज़रूर करें, दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग जो है वो भी ज़रूर करें और स्पीड जो है वो निर्धारित स्पीड गति पर ही जो है वो अपनी कार की स्पीड चलाएं शोतो, है ना जी। उससे एक्सीडेंट होने के खतरे जो हैं, खतरा जो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल माइनर सा जो है वो रहता है शोतो, इसलिए निर्धारित स्पीड गति पर ही जो है वो स्पीड अपनी कार और अपनी बाइक की स्पीड, स्कूटी की स्पीड जो है उसी गति पर चलाए शोतो। अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और ख्याल रखा जा सकता है नियमों को फॉलो करके, नियमों के साथ चलकर। चलिए लेके चलते हैं फिलहाल।

0: जोकर।
1: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला है और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। हम में से बहुत से लोगों ने, हम में से बहुत से श्रोताओं ने इश्क तो ज़रूर किया होगा और वो इश्क में रोए भी होंगे, हंसे भी होंगे। बहुत से लोगों को जो है वो इश्क प्राप्त भी हुआ होगा, मिला भी होगा। बहुत से लोगों को जो है वो इश्क नहीं भी मिला होगा, बहुत से लोगों को धोखा मिला होगा, बहुत से लोगों को जो है वो बेवफाई मिली होगी और बहुत से लोगों को जो है वो वफा भी मिली होगी। लेकिन फिर घूम के ना एक वो गीत याद आता है कि चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, है ना। तो आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की, मेरा बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट, दिल के करीब ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट।

0: चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फिलहाल तो श्रोताओं अब वक्त हो गया है 7:45 और अब इश्क में पढ़ने का नहीं, अब प्रादेशिक समाचारों में पढ़ने का वक्त हो चुका है। जी बिल्कुल श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आपने रेडियो गुंजन ट्यून किया है और ये नाचीज सचिन कपूर आपके साथ है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: विस्तार से, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एरियर को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को बचे हुए पूरे पेंशन एरियर का 100% भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को कुल एरियर का अतिरिक्त 15% दिया जाएगा, जो पहले मिले एरियर के अलावा होगा। ये एरियर इस महीने की पेंशन के साथ दिया जाएगा, जो अगले महीने खाते में आएगी। आज जारी आदेश के अनुसार यदि किसी पेंशनर को ज्यादा भुगतान हुआ है तो वो एरियर से एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में 21 सितंबर को जारी किए गए आदेश को रद्द माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों के साथ किए गए हर वायदे को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जा रहा है। उन्होंने आज सिरमौर जिले में रेणुका क्षेत्र के माइना में एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वायदा पूरा किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य परिवहन निगम के लगभग 11,000 कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अनेक मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के

0: संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। अभियान के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए और 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। अभियान का दूसरा चरण वर्ष 2021 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
1: क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है, इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। हमारे शहरों में बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बहुत बड़ी समस्या बन गए। अब ऐसे कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है और हम कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र पर काम कर रहे हैं।
0: आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इस मौके पर शिमला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आयुर्वेद पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है।
2: लोगों का आकर्षण बड़ा है और मैं समझता हूँ कि जब कोरोना हुआ था तो लोगों ने काफी ज्यादा आकर्षण इसके ऊपर दिया था आयुष विभाग में, और हम देखते हैं कि कई लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एलोपैथी से छोड़ के जो है हमारे पास आयुर्वेदा में आते हैं, चाहे वो पंचकर्मा करवाते हैं या कोई और मसाज लेते हैं जिससे कि उनकी बीमारियों में जो है वो राहत मिली है। पंचकर्मा को बढ़ाने के लिए हमने वेलनेस पंचकर्मा जो है वो स्टार्टअप किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने शुरू किया है और साथ में हमने अभी 216 जो है हमारे टेक्नीशियन जो है हमने इस साल जो है उनका कोर्स भी जो है वो चालू कर दिया।
0: सेवा ही संकल्प अभियान के तहत आयुर्वेद दिवस पर भाजपा द्वारा आज सोलन में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मरीजों की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां बांटी गई। भाजपा समस्त प्रकोष्ठ संयोजक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि सेवा ही संकल्प अभियान के तहत पार्टी द्वारा सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
3: आयुर्वेद दिवस इस रूप में मनाया क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हम सब ने मनाया और भारतीय जनता पार्टी ने 17 अक्टूबर तक देश में विभिन्न सेवा के काम, संकल्प के काम और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के काम पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। यानी कि कुल मिलाकर 1 महीने तक इस तरह के सारे आयोजन सेवा कार्य देश भर में चलेंगे। उसी कड़ी में आज का ये फ्री जांच का जो शिविर रखा है ये भी उसी को समर्पित है।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
5: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
4: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से इस महीने की 28 से 30 तारीख तक बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के धनेटा में आयुर्वेद कॉलेज व एम्स स्तर का उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिले के लंबलू में आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित चिकित्सा शिविर के शुभारंभ अवसर पर यह जानकारी दी। बिट्टू ने कहा कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और योग हमें जिंदगी भर पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई सराहनीय निर्णय लिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जोल सप्पड़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के नए कैंपस में नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज के साथ अलाइड हेल्थ सर्विसेज कॉलेज का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में ही कैंसर केयर संस्थान, एक अलग मातृ शिशु अस्पताल और क्रिटिकल केयर यूनिट भी स्थापित की जाएगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा, नगर निगम, सिटी सेंटर और कई बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिससे हमीरपुर को एक नई पहचान मिल रही है। लाहौल स्पीति जिले में घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर व संभावित जोखिम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने आज 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर घेपन झील में स्थिति का जायजा लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
7: घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर और संभावित जोखिम को लेकर लाहौल स्पीति प्रशासन सतर्क है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बुधवार को करीब 14 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई कर स्वयं घेपन झील पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने झील के जलस्तर, आसपास के भूभाग और पानी के संभावित बहाव मार्ग का निरीक्षण किया। घेपन झील करीब 4,070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रशासन यहां पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है। उपायुक्त का स्वयं दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना प्रशासन की गंभीरता और लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुशील कुमार सिंगला ने कहा है कि ठोस कचरा प्रबंधन अब समाज के हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद देश में नए नियमों को लेकर जागरूकता अभियान तेज हो गया है। सिंगला ने कहा है कि नदियों को बचाने के लिए नालों पर जाली और ट्रैश बैरियर लगाना अनिवार्य होगा।
8: हमारी कोशिश होगी कि एक साल में कि जो हमारी स्वच्छता रैंकिंग होती है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट, रूरल, हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई एक दो सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या कि हम एक साल के अंदर टारगेट रखें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है। जब तक समाज के अंदर जागरूकता नहीं होगी, जब तक हम सब मिलकर सोचेंगे नहीं कि हमको पर्यावरण को कैसे बचाना, उसी दिशा में ये कदम है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर कोई पोल्यूशन कर रहा है तो उस पर हम इंस्पेक्शन करें, उसको फाइन करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेंशन एरियर को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को बचे हुए पूरे पेंशन एरियर का होगा 100% भुगतान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस की बहाल, हर वायदा चरणबद्ध ढंग से होगा पूरा। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक रविवार 27 सितम्बर को रहेंगे खुले। राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले के धनेटा में आयुर्वेद कॉलेज व एम्स स्तर का संस्थान खोलने का लिया निर्णय। और घेपन ग्लेशियर झील के बढ़ते जलस्तर को लेकर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन सतर्क, उपायुक्त ने लिया स्थिति का जायजा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
9: श्रोता एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे थे। तो श्रोताओं, वक्त हो गया आप सभी से अलविदा लेने का। यही कहूँगा, माँ बाप की सेवा करते रहिए, प्रकृति को ठीक रखिए, हर किसी की मदद ज़रूर कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद ज़रूर कीजिए, अपनों के साथ प्यार बनाकर रखिए, अपनों की सहायता कीजिए। और आरजे सचिन कपूर को रेडियो गुंजन में यूं ही सुनते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: साहब पे काटा, साहब पे।
1: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
2: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
1: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
3: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: नमस्कार। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलू?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दे।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम
9: क्या? आपको काम से

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालने क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई,
2: कमाल के हैं। हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सजनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।